0: अगर आप करवट लेकर सोते
1: हैं। यार घुटना गया लगता है
2: भाई, अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।

0: Maestra.
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो सुरों का

0: 26 बरस का साथ है ये, यादों का सतरंगी एहसास है ये।
1: FM रेनबो लखनऊ साथ, दूसरा कोई कहां,
2: म्यूजिक मस्ती मैजिक सब है यहां।
0: 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

और दोस्तों इस ओर सलाम नमस्ते कहने के लिए आपका दोस्त विनय है। आप सुन रहे हैं विनय के साथ नॉनस्टॉप सुपर हिट गाने, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो सुरों का लखनऊ एहसास।

0: जाए जो ई सब एके संग,
1: तो बन जावे हर दिन त्योहार।
2: सिया बनी दुल्हन दुल्हा रघुराई, सिया बनी दुल्हन दुल्हा रघुराई।
3: सुना कार्यक्रम सुगंध माटी की
4: हर बुध और शनिचर
3: सवेरे 10 बजे
1: FM

नमस्कार, सुबह के 11 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर गुजराती संगीतकार गौरंग व्यास के निधन पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता अविनाश व्यास की समृद्ध संगीत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुजराती संगीत की दुनिया में अपनी एक खास जगह बनाई थी। श्री मोदी ने कहा कि गौरंग व्यास के निधन से गुजरात के एक प्रतिभाशाली कलाकार को खो दिया है। गुजराती संगीत में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। श्री जोशी ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा में कक्षाओं में नवाचार को बढ़ावा देने और युवा तथा गतिशील भारत के आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के साथ भी बैठक की और आने वाले महीनों में होने वाली परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित ड्रोन शो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा, जो 4 सितंबर को रात करीब 9 बजे से शुरू होगा। इस दौरान 500 ड्रोन अलग अलग आकृतियों के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं से जुड़े दृश्य प्रदर्शित करेंगे। मथुरा वृंदावन के नगर आयुक्त तेजस्वी राज ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महापर्व को भव्य, आकर्षक और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन के सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारी वर्षा के कारण जहां एक ओर प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वन क्षेत्रों वाले जनपदों में जल भराव होने के कारण वन्य जीव आबादी और खेतों की तरफ रुख कर रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रदेश की वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोनी ने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुरादाबाद, बहराइच, सीतापुर, गोंडा, अमरोहा और संभल के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर बचाव संबंधी दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्नाव में अजगैन पुलिस एवं मिशन शक्ति द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेस 5 के अंतर्गत ग्राम जगदीशपुर में महिला जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना अजय गैन सुरेश कुमार सिंह एवं मिशन शक्ति टीम उपस्थित रही। इस दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के संबंध में जागरूक किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

और हम लोग अनजाने नहीं है, हम है विनय। आप सुबह से हमें सुन रहे हैं और आप 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम सुनना शुरू कर चुके हैं। संदेश आपके, गीत हमारे, तो कोई भी मैसेज है जो आप हमें देना चाह रहे हैं हमारे मेल्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपको पता है, fmakashmoni@gmail.com, और साथ ही साथ हमारे टेलीफोन नंबर है 0522 2238 852, और दूसरा नंबर है 0522 2238 845। फिलहाल अनजाना अनजाने फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आप सभी के लिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर, विनय आपके साथ है और आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम सुन रहे हैं संदेश आपके, गीत हमारे, और इसमें एक पहला हम मेल ले लेते हैं। ये हमें मोहम्मद आसिफ जी ने किया है और मोहम्मद आसिफ अंसारी जो हमें हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं। और आसिफ जी आपने 1 साथ 3 मेल हमें कर दिए हैं, तो हम आपका पहला वाला मेल पढ़ रहे हैं और ये लिख रहे हैं हम एक छोटे से गांव राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी के रहने वाले हैं और मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि आजकल सर्पदंश की खबरें बहुत आ रही हैं। सर्पदंश यानी सांप निकलते हैं बरसात में, है ना, तो उसके लिए ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में सावधान रहें, खेत और गोदाम जहाँ जानवरों का भूसा रखा हुआ है उन जगहों पर सतर्कता से जाएं और साथ ही साथ रात में टॉर्च का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को झाड़ियों के पास न खेलने दें। तो आसिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सच में एक बढ़िया मैसेज किया है क्योंकि इस वक्त सर जो बरसात के मौसम में सिर्फ गांव में नहीं, हमारे अपने शहर लखनऊ में भी सांपों का निकलना हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि बरसातों में बिलों में पानी भर जाता है, उसकी वजह से ये समस्या आ ही जाती है। और हमें अनिल कुमार जी ने मेल किया है, ये हमें उत्तराखंड से मेल करते हैं और इन्होंने लिखा है कि जिंदगी खूबसूरत तब लगती है जब हम शिकायतों से ज्यादा छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाते हैं। बात एकदम सही है। और एक बात भी इन्होंने लिखी है कि 26 अगस्त को आप हम सभी जानते हैं कि नेपाल में एक बड़ा हादसा हुआ और ये वहाँ पर उस हादसे में लोगों की मदद करने की बात कह रहे हैं और अगर आप सक्षम हैं तो मदद करिए और किसी भी आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर डोनेट भी कर सकते हैं आप, हर जगह कहीं पर भी डोनेट नहीं करना है आपको, आपको ये आधिकारिक प्लेटफॉर्म देखिए जहाँ पर डोनेट किया हुआ आपका कोई भी सामान, कोई भी पैसा या आप मदद करना चाह रहे हैं तो आपको सही जानकारी मिलेगी और सही स्थान पर पहुँच जाएगा। तो अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया और हमारे जो भी लिसनर हमें सुन रहे हैं और आप हमें कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो हमें भेजिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। फिलहाल एक और बेहतरीन ट्रैक आ रहा है आप सभी के लिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन, अब वो बन गया है सुरो का लखनऊ एहसास। और ये जो गाना आ रहा है मेरा फेवरेट वाला गाना है, आई होप आपको भी पसंद आएगा।

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow. Suron ka Lakhnavi Ehsaas.
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: ये उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं
1: जी? हम गुलमा गांव से मुश्ताक अली बोल रहे हैं, ननपारा जिला बहराइच से।
0: जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
1: ये फूल मिलता ही नहीं है, ना सुबह मिले ना शाम के, रात में लगाता हूँ रोज। और
0: हाँ हाँ, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, फोन हमारे बहुत सारे लिसनर हैं जो लगातार हमें फोन मिलाते रहते हैं, तो अब देखिए आज तो आपका फोन मिला, आप हमसे बात कर रहे हैं।
1: जी रोज लगाता हूँ, 22 जुलाई के मिला था एटीएम में शाम के, तब से नहीं लगा फोन, और लगाए थे रोज शाम के और सुबह भी लगाते हैं।
0: तो मैंने कहा ना कि आज देखिए हम ना लकी हैं कि आपसे हमें बात करने को मौका मिल रहा है, तो आप हमें ये बताइए कि आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को?
1: संदेश यह है कि सर पानी जो है, ज्यादा पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है इस समय।
0: हाँ,
1: तो हमारे यहाँ जो है नाले में है, घरिहार भी है, तो लोग वहाँ भैंस या पस चराने जाते हैं, तो उसे देख कर जाए जो है खतरा रहता है, छगड़ी कई थोड़ी माडारी से वो घरियाल।
0: अच्छा, तो मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि आप देख समझ के चलिए, बारिश की वजह से कोई परेशानी हो सकती है आपको।
1: जी जी, और एक शहर है इसके बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें फोन मिलाने के लिए, और ऐसे ही हमारे जो भी लिसनर हमसे बात करना चाह रहे हैं तो वो हमें फोन मिला सकते हैं 0522-2238-852, और दूसरा नंबर है 0522-2238-845 पर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर।

0: जान चली जाएगी।
1: दारू में धूम मच गया,
0: दारू पी के तो मजा आएगा जान का।
2: दोस्तों 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे, और आइए अब कुछ मेल्स पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे बड़े सारे साथी मेल्स भी कर रहे हैं। और वकील अहमद साहब हमें मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा, इन्होंने तारीफ की है, थैंक यू सो मच। मैसेज है कि बारिश हो रही है तो सभी लोग अपने जो आसपास नदी तालाब के पास ना जाएं क्योंकि ख़तरा हो सकता है। और बहुत सारे नाम लिखे इन्होंने और हमने आपका नाम पढ़ दिया, और ये जो आपने नाम लिखे ना, ये रेगुलर लिसनर्स हैं और ये खुद भी हमें मेल और कॉल करते रहते हैं। थैंक यू वकील अहमद साहब।

और साथ ही साथ हमें गुड मॉर्निंग कहते हुए, अच्छा गुड मॉर्निंग प्यारे भैया कहते हुए हमें लखनऊ से मेल आया है, और ये है, मैं लखनऊ से हूं और एक शायरी हमारे लखनऊ, अच्छा लिखती है कि ये शहर भी क्या शहर है, हवाओं में धुआं है, फिजाओं में जहर है। अरे रे, जर्रे जर्रे में कुदरत समेटे, कुछ दूर पर मेरा गांव है, आंगन की सुहानी धूप और पीपल की ठंडी छांव है। वाह वाह वाह। हालांकि अभी तो मेरा शहर में पानी पानी है। ये दिव्यता राज वर्मा जी हैं, इन्होंने हमें मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें रेगुलरली मेल करते रहिए हमारे सभी प्रोग्राम्स में, क्योंकि हम सभी आप ही के लिए प्रोग्राम लाया करते हैं। और हमें बबीता राव जी ने मेल किया है, और बड़ा कलरफुल मेल है, लिखती हैं कि ये गुसाईगंज लखनऊ से मेल कर रही हैं, मॉर्निंग से हमें सुन रही हैं, और बोलती हैं कि सुपर हिट प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा किया, बोले तो कत्तई अच्छा, इन्होंने सलामी दी है सात तोपों की, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा लिखने के लिए। और मैसेज ये है कि कुछ लोग फर्जी जॉब और प्रलोभन के चक्कर में फंस जाते हैं, फ्रॉड लोगों की जानकारी से दूर रहें, और विश्वसनीय चैनल लोगों पर ही भरोसा करें, आंख बंद करके सब पर भरोसा ना करें। और ये भी लिखा है इन्होंने कि किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को साझा नहीं करना चाहिए हर जगह। ये बातें आपने बहुत ही ज़रूरी लिखी हैं, क्योंकि आज इस समय लोग क्या करते हैं कि आपसे कुछ भी एक लिंक भेज देंगे या कोई स्कैनर भेज देंगे, और आप गलती से भी अगर आपने ऐसा कर लिया या कोई भी ऐसा फ़ोटो आपने क्लिक किया तो आपकी इन्फो चली जाती है, तो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से आपकी बात एकदम सही है। और साथ ही साथ सुनीता राज वर्मा जी ने हमें मेल किया है, नमस्ते कह रही हैं, नमस्ते भैया। और ये इनका जो संदेश है वो ये है कि अच्छा ओके, ये लिखते हैं कि 18 जो अबव स्टूडेंट के लिए वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, UPSSSC ने डेट एक्सटेंड कर दी है पेट की। अरे वाह क्या बात है, ये आपने बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी है, और ये मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी है कि जो पेट है PET जो कि UPSSC के एग्जाम्स में जाने की एक खिड़की है, एक रास्ता है, तो उसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। तो जो भी लिसनर्स रह गए थे फॉर्म भरने से, उसको भर दे, और भरने से पहले सुनीता राज वर्मा को थैंक यू जरूर बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और बेहतरीन ट्रैक आपके लिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जहां पर विनय आपके साथ है, सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए।

0: और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 100.7 FM रेनबो पर। संदेश आपके गीत हमारे में हमारी एक और लिसनर हमसे जुड़ी आई, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहा है?
1: हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
0: जी गुड मॉर्निंग, बताइए जी अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम मीनाक्षी द्विवेदी है।
0: जी मीनाक्षी जी, कहाँ से बोल रही है?
1: मैं सीतापुर से बोल रही हूँ।
0: बताइए क्या आपका क्या मैसेज है?
1: सर, हाँ सर, हमारा ये मैसेज है कि गरीबों को इंसान नहीं देखते हैं, गरीब बेचारे रोड पे बैठे रहते हैं। अब भगवान को भी इंसान मानता है, लेकिन भगवान भाव के भूखे होते, पैसे की नहीं भूखे होते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, गरीबों को दान दीजिए, पैसे दीजिए, वो आपको लाखों दुआएं देंगे।
0: चलिए बहुत ही बेहतरीन बात है आपने कही, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें फोन मिलाने के लिए।
1: सर फोन नहीं लगता हमारे, 3 बार कॉल गए लेकिन फोन नहीं उठा है।
0: अरे अब तो उठ गया है, देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं।
1: अरे 1 महीने बाद हमारा फोन लगा है।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कभी हेलो एफएम में नहीं लगता, कभी भी नहीं।
0: कोई बात नहीं, इस बार हम आएंगे ना, आप ट्राई करिएगा, दिल से जरूर लगेगा।
1: आज हम आपसे पहली बार हमारी बात हुई है।
0: नहीं, मेरी भी आपसे पहली बार बात हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बहुत ही प्यारी सी आवाज है।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो दोस्तों इन्होंने एक बात जो कही वो थोड़ी गहरी है कि ईश्वर अल्लाह भगवान कोई भी वो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें आप प्रेम से और सच्ची श्रद्धा से बस नमन करिए और कुछ भी मत करिए, वो आपको सब कुछ देंगे। और आपके आसपास कोई गरीब बच्चा है, कोई गरीब व्यक्ति है जिसे खाने की ज़रूरत है, कुछ सामान की ज़रूरत है, उसे आप पूरा करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो बात कही उसके लिए। फिलहाल एक और ट्रैक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर, संदेश आपके गीत हमारे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: तो आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो
1: शुरू का लखनवी एहसास।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो शुरू का लखनवी एहसास और मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे। और आई होप आपको गीत पसंद आ रहे होंगे और अगर ऐसा है तो आप हमें मेल करके बताइए fmakashwani@gmail.com पर। और मेल्स की ओर बढ़ते हैं तो हमें मेल आया है ये सरजी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी ये तिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहे हैं और संदेश है कि जो लोग अच्छा इन्होंने ना SMS लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अच्छा ओके तो इन्होंने लिखा है कि कुछ लोग कुछ मदिरा पान करके अपने आसपास के लोगों को मतलब आप परेशान करते हैं उसके लिए है। अब ये मेल मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाऊंगा, मैं थोड़ा इसको पढ़ लूँ तब, है ना। बाबू अंसारी जी ने हमें मेल किया है बाराबंकी से, इन्होंने लिखा है और गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और साथ साथ लिखते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। तो ये बात तो सही है। अमर नवाब ने हमें मेल किया है संडीला से और वाह वाह क्या बात है अमन, आपने ना मेरी बहुत ही प्यारी सी फोटो को भेजा है मुझे जो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी फोटो है। चलिए थैंक यू सो मच, बड़ा ही सुंदर लगा मुझे, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और लिखती है कि बीड़ी जलेले गाने पर मैंने भी डांस किया, मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मैसेज है कि बीमारियों से बचाओ, उबला हुआ पानी पिए और बासी या खुला खाना खाने से बचें, बरसात में मच्छरों से बचाव के लिए घर में पानी जमा नहीं होने दें और सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। शुक्रिया कह रही हैं, आपका शुक्रिया कि आपने हमारा इंस्टाग्राम पर आप गए और आपने हमारी इतनी प्यारी सी फोटो को हमें भेजा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और हमें एक और मेल आया है, ये हमें दिल्ली से मेल है, दिल्ली इंद्रलोक से हमें ये नजीम रैन जी सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। कुछ और लिखते तो बेहतरीन लगता हमें। रोशनी रावत ने हमें मेल किया है और गुड मॉर्निंग कहते हुए लिख रहे हैं कि गाने इन्हें अच्छे लग रहे हैं, ये उन्नाव की रहने वाली है, फिलहाल चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हैं और मैसेज है कि सड़क पर सावधानी ही जीवन की सुरक्षा है, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा सुरक्षित बनाए रखें। रोशनी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। हमारे जो भी साथी हमें सुन रहे हैं, हमें मैसेज करना चाह रहे हैं, मेल करना चाह रहे हैं तो fmakashwani@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और एक और हम गाना, एक और मौका आपको दे रहे हैं डांस करने का, तो आइए हम मिलकर एक बार फिर से झूम उठते हैं।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का एक विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। यह अभियान राज्य के सभी 75 जिलों में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ NB सिंह ने पात्र किशोरियों और उनके माता पिता से अपील की है कि वे आगे आएं और अभियान के दौरान टीका लगवाएं। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जौनपुर सदर के विधायक व राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव को पत्र के द्वारा जानकारी दी है कि जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 2241922420 गाजीपुर सिटी आनंद विहार टर्मिनल सुहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव को स्वीकृति प्रदान की गई है। भारी वर्षा के कारण जहां एक ओर प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वन क्षेत्रों वाले जनपदों में जलभराव होने के कारण वन्य जीव आबादी और खेतों की तरफ रुख कर रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रदेश की वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोनी ने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुरादाबाद, बहराइच, सीतापुर, गोंडा, अमरोहा और संभल के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कर बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। श्री राम मंदिर के पहले CEO जितेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ व आज वैदेही भवन में नव नियुक्त महासचिव गोविंद देवगिरी व अन्य सदस्यों से मुलाकात करेंगे। पहली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी, जिसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने एक बयान में कहा कि इसमें 6 टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका शामिल हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित होगा।

0: आपन संस्कृति आपन संस्कार।
1: सिया जी के सो भेले पियरिया, पियर रंग पीनरिया नो हा, अरे हो
2: माटी की सुगंध और लोग

0: संगीत संग नीक नीक बात कही
1: और श्रोता पंचन के भरपूर प्यार
2: पहिल दफा जब गयन ससुरारी
0: मिली जाए जो ई सब एक संग
3: तो बन जावे हर दिन त्योहार
4: सिया बनी दुल्हन दुल्हार रघुराई सिया बनी दुल्हन दुल्हार रघुराई
0: सुना कार्यक्रम सुगंध माटी की
1: हर बुध और शनिचर
0: सवेरे 10 बजे
3: FM रेनबो।

जी 12:06 और ये वक्त होता है हमारी महिलाओं के दिल को छू लेने वाले कार्यक्रम शत्रुपा का। जिसे लेकर हाजिर है आपकी दोस्त शिखा। ये कार्यक्रम हर दिन कुछ ना कुछ खास लाता है हमारी गॉर्जियस गर्ल्स के लिए। भाई लेडीज कहना तो नहीं अच्छा लगता है, जी गर्ल्स ही बोलते हैं। जी हाँ, हमारी जितनी गॉर्जियस गर्ल हैं उन सब के लिए है ये कार्यक्रम शत्रुपा। कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं इस कार्यक्रम में, जिसको अपना कर आप बन जाती हैं एक्सपर्ट। तो भाई जैसा कि आज हम सब जानते हैं, आज कौन सा दिन है? आज है थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार। तो आज के दिन हम क्या बात करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। जी हाँ, आपके दिल की जो आवाज है वो मैं सुन रही हूँ। आज हम बातें करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन की। तो हम आज अपनी क्या खास लाए हैं लेडीज के लिए, क्या बातें करने वाले हैं खास, वो हम आप तक पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले भाई एक गाना तो बनता है, तो चलिए गाना आ रहा है आप तक, वो इंजॉय करते हैं, फिर लौट कर आते हैं और बातें करते हैं, क्योंकि आपसे मिलना हमको बहुत अच्छा लगता है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

भाई प्यारा सा ट्रैक आपने सुन लिया। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, और वो भी जब प्रोग्राम शत्रुपा हो। तो भाई इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त शिखा प्रोग्राम शत्रुपा में। अच्छा दोस्तों, एक बात पूछूं आपसे कि आपका घर सुंदर तो होगा ही, लेकिन क्या वो ताजगी और पॉजिटिविटी से भरा लगता है? जी हाँ बिल्कुल, सोचिए सोचिए सोचिए। तो घर में ऐसा क्या करें जो हमारा घर सुंदर लगे, पर इसके अलावा उसमें ताजगी और हरियाली भी आए। तो जब बातें हो सुंदरता, ताजगी, हरियाली की, तो सबसे पहले क्या चीज ध्यान में आती है? भाई अगर हम सुंदरता की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं और हरियाली की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक चीज स्ट्राइक करने लगती है, वो है प्लांट्स। जी हाँ, पौधे। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम पौधे लगाने से पहले ना थोड़ा हिचकिचाते हैं। हमें सुंदरता तो चाहिए होती है, पॉजिटिविटी भी चाहिए।

होती है और हरियाली भी चाहिए होती है, लेकिन हम उन पौधों को अपने घर में लाने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है उसके पीछे जो थोड़ा बहुत थोड़ा सा झंझट होता है ना, कि मिट्टी लगेगी, गमला चाहिए होगा, धूप चाहिए होगी, उसको धूप दिखाना पड़ेगा, रोज पानी देना पड़ेगा, कितना कुछ करना पड़ेगा। तो अगर हम आपसे ये कहें कि भाई इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लग रहा है ना? जी हाँ, इट साउंड्स गुड। तो अगर हम ये बोल रहे हैं आपसे कि भाई इतना सोचने की जरूरत है नहीं है, तो ये सुनकर आपका मन ना गदगद हो गया होगा, मतलब खुशी से आप मतलब समझ नहीं रहे होंगे कि क्या करें, कि भाई पानी भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब इतना पानी नहीं देना पड़ेगा, धूप भी नहीं दिखानी पड़ेगी, और इतनी जो मेहनत करनी पड़ती है प्लांट्स के साथ वो नहीं करनी पड़ेगी। तो भाई इस प्रॉब्लम का हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। जी हाँ, वो सॉल्यूशन है एयर प्लांट्स। तो हम आज बात करेंगे एयर प्लांट्स की। तो बातें तो अभी और भी, पर उससे पहले भाई हमारे जितने लिसनर्स हैं ना, वो कह रहे हैं कि एक गाना हम उन तक पहुंचा दिया जाए। तो एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक क्यों करके रखा है आपके लिए, तो चलिए एंजॉय करते हैं और लॉन्च कराते हैं और बातें करते हैं कि किन किन एयर प्लांट्स का यूज़ हम कर सकते हैं अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए और हरियाली सुंदरता लाने के लिए। तो चलिए गाना इंजॉय करते हैं और लॉन्च कराते हैं।

जी 12:22 का वक्त और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास। जी हाँ, लखनवी एहसास जिसपे आप कार्यक्रम सुन रहे हैं शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। और आज शत्रुपा में हम बातें कर रहे हैं कि कैसे हम अपने घर की जो महिलाएं होती हैं, हमारी प्यारी प्यारी गॉर्जियस गर्ल्स होती हैं, जी हाँ, उनकी टेंशन को कम कर दें। क्योंकि उनका मन क्या करता है कि हमारा घर सुंदर लगे, पॉजिटिविटी से भरा हो और उसमें हरियाली छाई रहे। तो आज हमारी महिलाओं की टेंशन को दूर करने वाले हैं हम एयर प्लांट से घर को यूनिक मेक ओवर करके। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो हम महिलाओं की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि भाई हम घर को बहुत सुंदर, हमें घर सुंदर दिखना चाहिए और उसके लिए हम अथक प्रयास करते हैं। और उसमें एक चीज़ जो हमें बहुत भाती है लेकिन हम उससे थोड़ा दूर होते जाते हैं, कटते जाते हैं। जी हाँ, हमें प्लांट्स तो बहुत पसंद है और उन प्लांट्स में जब फ्लावर्स आते हैं तो क्या ही बात, लेकिन उन प्लांट्स को लगाने की जो झंझट होती है, मिट्टी लगना, गमला चाहिए होता है और धूप दिखानी होती है, पानी देना होता है। तो हम आपसे कहें कि भाई एयर प्लांट्स को यूज करके आप इन सब झंझटों से मुक्ति पा सकती हैं तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो चलिए बात करते हैं एयर प्लांट्स की, जो घर की खूबसूरती में चार चांद लगा।

बता देते हैं। अपनी अनोखी बनावट, आकर्षक पत्तियों और आसान देखभाल के कारण ये जो प्लांट्स है ना, ये घरों से लेकर ऑफिस तक सजावट के लिए काफी पसंद किए जाते हैं। जी हाँ, इनको बहुत पसंद किया जाता है। तो आगे क्या है, इनको हम कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या चीजें इनके लिए जरूरी होती है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई, एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है और इतना प्यारा है कि मुझे तो बहुत पसंद है, और मुझे लगता है जितने हमारे लिसनर्स इस गाने को सुनेंगे तो कहेंगे वाह शिखा, क्या गाना बजाया है तुमने। तो चलो इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आप तक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण।

जी 12:30 और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। और आज प्रोग्राम में हम बातें कर रहे हैं कि कैसे हम एयर प्लांट्स का यूज करके अपने घर को मेक ओवर कर सकते हैं। जी हाँ, हरियाली ला सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। और दोस्तों एक बात आपसे पूछूं, जब मैंने एयर प्लांट्स की आज बात करी है ना, ये जो एयर प्लांट्स का वर्ड सोच लीजिए मैंने अपने मुंह से निकाला, तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, ये पौधे बिना मिट्टी के आखिर उगते कैसे हैं? तो आपको बता दूं कि अगर आप इनकी पत्तियों पर नजर डालेंगे, जी हाँ इनकी लीव्स पे आप अगर नजर डालेंगे, तो देखेंगे कि इनमें बहुत छोटे छोटे और बारीक रोपे होते हैं जिन्हें ट्राइक्रोम्स कहा जाता है। ये हवा से पानी और नमी को सोखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। इनको भी आपको रेगुलरली पानी देना होगा। जी हाँ, इनको आपको वाटर देना ही देना होगा। ये है कि जब हमारे घर में जो गमले होते हैं जिनमें मिट्टी वाले पौधे होते हैं, जो उसमें हमको डेली पानी देना पड़ता है। इसमें क्या आप बॉटल में फिल करके आप स्प्रे उसको स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो हुई ना काम की बात। तो ये काम की बात सुनकर भाई अच्छा तो बहुत लग रहा होगा। और आज अभी तक जिन लेडीज को घर में पौधे लगाने का शौक था और उन्होंने नहीं लगाया था इन सब झंझटों के चलते कि भाई पानी देना होगा, डेली देना होगा, गमले लगाने होंगे, उसमें मिट्टी डालनी होगी, उसको धूप भी दिखानी होगी, तो अगर आज आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी है तो भाई इंस्पिरेशन तो मिली होगी और अंदर से मन खुश भी बहुत हुआ होगा। तो भाई आप ये बातें अभी हमारी ऐसे ही जारी रहेंगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। लेकिन एक प्यारा सा गाना आ रहा है आप तक, तो चलिए पहले वो गाना एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं और बातें करते हैं। अभी बहुत कुछ है आपके लिए। जी हाँ, बहुत कुछ है। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: जी 12:44 हो चुके हैं और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शत्रुपा, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा है आप

के साथ। और इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रही है आपसे कि भाई आपका ये जो दिल है ना वो कह रहा होगा दिल गार्डन गार्डन हो गया रे बबरा बगियन में खो गया, क्योंकि आज हम इतनी अच्छी अच्छी बातें करें कि दिल तो गार्डन गार्डन होना ही है, क्योंकि बातें हो रही हैं एयर प्लांट्स की। दोस्तों एयर प्लांट्स ना प्रकृति की एक खूबसूरत देन है। आयोनाथा, जेरोग्राफिका, बुलबोसा, कैपुट मुडेसु, एरेंथोस और स्पैनिश मॉस जैसे एयर प्लांट्स अपने खास आकार, पत्तियों और रंग रूप में खास पहचान बनाते हैं। आजकल घरों की सजावट में सादगी और प्रकृति का मेल खूब पसंद किया जा रहा है। जी हाँ, घर सादगी से भरा हो और उसमें नेचुरलिटी हो, जी हाँ प्रकृति से भरा हो, कितना अच्छा लगता है घर। ऐसे में एयर प्लांट्स मिनिमल और मॉडर्न डेकोर के लिए एक खूबसूरत ऑप्शन है। जी दोस्तों, अभी बातें हम कर रहे हैं एयर प्लांट्स की, और मैंने बताया कि अगर घर को सिंप्लिसिटी से भरना हो और मॉडर्निटी भी लानी हो और सादगी भरनी हो और सुंदरता, हरियाली, सारी चीजें मतलब आपको एक पूरा कॉम्बो चाहिए हो, तो आप एयर प्लांट्स का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो एयर प्लांट्स है ना, ये कल के डेकोरेशन में आपकी करने वाले हैं बहुत मदद। जी हाँ, क्योंकि कल का डेकोरेशन तो अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई ना हमारे सर पे। भाई कल है कृष्ण जन्माष्टमी, तो इसका जो डेकोरेशन होता है वो तो अपने आप में ही खास होता है। जन्माष्टमी के दिन घर के मंदिर को यूनिक तरह से सजाना तो बनता है, तो एयर प्लांट से अगर आपने अपने घर और मंदिर को सजा दिया तो सबसे सुंदर आपका घर और मंदिर लगने वाला है। क्योंकि ये जो प्लांट्स है ना, ये आप घर के अंदर जब लगाएंगे तो घर के मंदिर के अंदर जब आप लगाएंगे तो एक रहता ना कि हमारा मंदिर गंदा ना हो, तो आप ये प्लांट्स लगाकर, जी हाँ अभी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे आपको ये प्लांट्स लगाने हैं मंदिर में, लेकिन उससे पहले भाई एक बहुत ही प्यारा सा गाना आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं वो इंजॉय कर लें, क्योंकि कल क्या है ना, कल हमारे कान्हा का जन्मदिन है, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसकी बातें भी हम करें कि कैसे मंदिर को सजाना है। तो चलिए एक प्यारा सा ट्रैक इंजॉय करते हैं, ये वाला।

जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम शत्रुपा में। और आज हम बातें कर रहे हैं, प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना, और अभी बातें कर रहे हैं हम एयर प्लांट से कि कैसे हम कल जन्माष्टमी के दिन इनका यूज करके डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये जो आज का सेगमेंट है ना, वो बहुत ही खास है हमारी प्यारी प्यारी महिलाओं के लिए, क्योंकि जो सजावट की जिम्मेदारी होती है ना, वो पूरी आ जाती है हमारे सर पे। क्योंकि हो जन्माष्टमी तो मंदिर की सजावट भी करनी है हमें, और भोग तो बनाना ही बनाना है। तो इस बार हम अपने कान्हा जी के दरबार को एकदम नेचुरल और यूनिक लुक देंगे। तो इस यूनिक लुक को देने के लिए हम यूज करेंगे एयर प्लांट्स का। तो कान्हा जी के झूले को हम सजाएंगे, छोटे छोटे जो कांच के बल्ब आते हैं ना, उसका आप यूज कर सकते हैं, उसमें एयर प्लांट्स को लगाकर। जो देखने में यूनिक तो लगेगा ही लगेगा, और सुंदरता कितनी बढ़ा देगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अगर घर के मंदिर में वृंदावन वाला फील आ जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आपको लगे कि आप वृंदावन में हैं, तो उसके लिए थोड़े से तो एफर्ट्स करने होंगे। ये वाला फील लाने के लिए एक टोकरी में कान्हा की बांसुरी को रख कर उसके चारों तरफ टिलेंडेसिया वाले एयर प्लांट्स आपको लगाने होंगे। जी हाँ, उसके लिए थोड़ा सा आपको सर्च करना होगा, और जो टिलेंडेसिया वाले एयर प्लांट्स होते हैं उसको आपको लगाना होगा। और आप देखेंगे कि जो आपके मंदिर की सजावट है ना, वो कितनी बेहतरीन हो गई है। एक पॉजिटिव इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इसको लगाने के बाद मंदिर तो सुंदर लगेगा ही लगेगा, उसके बाद जब पूजा खत्म हो जाती है तो हमें ये लगता है तो गंदा हो जाएगा, तो गंदगी भी नहीं रहेगी और प्लांट्स एज इट इज रहेंगे। बस हफ्ते में आपको एक बार पानी का स्प्रे करना होगा। ये मंदिर और घर की

शोभा को लंबे समय तक बरकरार रखेंगे। तो भाई हुई ना आज काम की बातें। जी हाँ, बिल्कुल काम की बातें हुई, इंटीरियर डेकोरेशन। और देखा तो हमने कि कैसे हम घर को मेकओवर कर सकते हैं। लेकिन कल के दिन, जो कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जन्माष्टमी है कान्हा की, तो कान्हा श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस जो एयर प्लांट्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ये जानकर खुशी तो बहुत हो गई होगी। तो भाई आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और इस प्यारे से ट्रैक के साथ आपको छोड़ रही हूँ, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है और आपको बने रहना है अपनी दोस्त शिखा के साथ, क्योंकि अगला प्रोग्राम होठो पे तेरी बात भी आप इंजॉय करेंगे अपनी दोस्त के साथ। तो बस ऐसे ही बने रहिए, प्यार और एहसास से जुड़े रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर वार्ता कर बाढ़ की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने नदी के जलस्तर के साथ ही बाढ़ राहत शिविरों में प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को युद्धस्तर पर राहत एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि नागरिकों को कम से कम परेशानी हो। प्रधानमंत्री ने राहत शिविरों में रह रहे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फर्रुखाबाद जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन पहुंचकर बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में 96 बाढ़ पीड़ितों को दी चेक और 66 बाढ़ पीड़ितों को पट्टे की जमीन के प्रमाण पत्र तथा 1000 से लोगों को बाढ़ राहत किट सौंपी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जौनपुर सदर के विधायक व राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव को पत्र के द्वारा जानकारी दी कि जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 22419 22420 गाजीपुर सिटी आनंद विहार टर्मिनल सुहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कल लखनऊ में इन्फ्लुएंजा H1N1 और सीजनल इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा करते हुए रोकथाम तथा उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि H1N1 की जांच सभी जिला अस्पतालों, CHC, PHC मेडिकल कॉलेजों सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क कराई जाए। उन्होंने कहा कि अधिक मामलों वाले जिलों में निगरानी और उपचार व्यवस्था को और मजबूत किया जाए तथा अस्पतालों में दवा जांच और आइसोलेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने गंभीर मरीजों के लिए अलग ICU वार्ड तैयार करने तथा H1N1 की रोकथाम और उपचार के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का एक विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। यह अभियान राज्य के सभी 75 जिलों में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ NB सिंह ने पात्र किशोरियों और उनके माता पिता से अपील की है कि वे आगे आएं और अभियान के दौरान टीका लगवाएं। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित होगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो
4: फिर मानो।

शुरू हो चुका है हो जो पे तेरी बात, जिसमें आपकी अपनी दोस्त शिखा रहेगी आपके साथ और जानेगी आपके दिल का राज। अरे भाई हाँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम यही बातें तो करते हैं कि किसी विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है उसको लेकर। तो रोज की तरह आज भी एक इंटरेस्टिंग विषय आपको देंगे और उस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है उस विषय पर, आपको हमें बताना है। और आपको हमें बताना है अपने मेल्स के थ्रू। तो वो टॉपिक हम आपको बताएं उससे पहले एक गाना एंजॉय कर लिया जाए। जी हाँ बिल्कुल, आपके दिल की बात मैंने सुन ली है और ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो पर। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, फिर लौट कर आते हैं और बताते हैं कि आज किस दिलचस्प विषय पर हम बात करने वाले हैं।

0: जवानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काशी से मेंबर पार्लियामेंट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात की और जिले में सैलाब ने दरिया के पानी के सतह और सैलाब से मुतासर अफराद को रिलीफ कैंपों में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी मालूमात हासिल की। वजीर आजम ने हिदायत दी कि सैलाब से मुतासर अफराद को इमदादी और जरूरी सहूलियात जंगी बुनियादों पर फराहम की जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि उन्हें कम से कम तकालीफ का सामना करना पड़े। उन्होंने हिदायत की कि जरूरियात वाले इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की फौरी इंतजाम करके इमदादी कामों को तेज किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कामों की मुसलसल निगरानी की जाए और मुतासर अफराद को फौरी इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया कि इमदादी कैंपों में रहने वाले बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के खसूसी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इंतजाम किए जाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज फरुखाबाद में सैलाब से मुतासर 1000 खानदानों में इमदादी सामान तकसीम करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में डबल इंजन की हुकूमत आपके साथ है।
1: आपदा की इस घड़ी में आप अकेले नहीं है, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार आपके साथ खड़ी है और आपके लिए वह हर मदद आप तक पहुंचाने का कार्य करेगी जो आपकी जरूरत होगी।
0: वजीर आला ने पुलिस लाइन में सैलाब से मुतालिक इमदादी सामान तकसीम किया। उन्होंने 96 सैलाब मुतासरीन में 1,20,000 के चेक तकसीम किए, 66 सैलाब मुतासरीन को जमीन के कागजात और 1,000 रुपये मालियत के फ्लड रिलीफ किट्स दिए। इससे कबल उन्होंने सैलाब मुतासर इलाकों का फिजाई दौरा भी किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी सरकारी रिहायशगाह पर एक आला सतही और मौसमी इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल का जायजा लिया। एक H1N1 मीटिंग में वजीर आला ने हिदायत दी कि इन्फ्लुएंजा H1 के जांच रियासत के तमाम सरकारी सेहत के इदारों मुफ्त करवाई जाए। उन्होंने हिदायत की कि जिले अस्पताल, CHC, PHC और मेडिकल कॉलेजों में मुनासिब टेस्टिंग, अदव्यात और इलाज को यकीनी बनाया जाए। जनाब योगी ने ज्यादा केस वाले अजला में निगरानी बढ़ाने और नाजिक मरीजों के लिए एक अलग ICU वार्ड्स की दस्तियाबी की हिदायत दी। मीटिंग में बताया गया कि 2 सितंबर तक रियासत में 685 लेबोरेटरी से तस्दीक शुदा केस रिपोर्ट हुए हैं। वजीर आला ने H1N1 में हिदायत की कि हल्की अलामत वाले मरीज तिब्बी मशवरे के मुताबिक आराम करें और घर में खुद को अलग थलग करें, जबकि शदीद मरीजों का फौरी इलाज किया जाए। उन्होंने बच्चों, हमला खवातीन, बूढ़ों और पहले से मौजूद तिब्बी हालात मुब्तला अफराद पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। वजीर आला ने गैर जरूरी घबराहट से बचने के लिए एक जामे अवामी बेदारी मुहिम शुरू करने और दुरुस्त मालूमात फैलाने की जरूरत पर भी जोर दिया। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए आज से रियासत भर में एक खसूसी HPV वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो रही है। ये 17 सितंबर तक चलेगी। इस मुहिम के दौरान 14 से 15 साल की तकरीबन 10 लाख अहल लड़कियों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। लखनऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर NB सिंह ने अहल लड़कियों को HPV टीके लगाने की अपील की। 14 से 15 साल की उम्र की लड़कियों को वैक्सीनेशन जरूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन बच्चादानी के कैंसर से बचने का वाहिद तरीका है। अपनी बेटियों को HPV वैक्सीन के टीके लगवाकर उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। साबिक एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। यह ऐलान कल ट्रस्ट के सदर महंत नित्य गोपाल दास की सदारत में हुई मीटिंग के बाद किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए CEO एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद CEO के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। CEO के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भगवान कृष्ण के जाय पैदाइश मथुरा में जन्माष्टमी त्यौहार

अजीमुशान और इलाही रंग देने के लिए तैयारियां जोरों पर है। पहली बार जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण की पैदाइश और मुख्तलिफ तफरीहात को आसमान पर जिंदा करने के लिए 500 ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। दरियस्ता वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा जिले का दौरा करेंगे। वह तकरीबन 1051 करोड़ रुपए के 229 तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में 6 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। दरियस्ता बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत की कई नदियां तुगयानी पर हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकर खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

जी 1:15 और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जी हाँ, प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ। तो आज एक बात पूछने वाली हूँ आपसे। जी हाँ, एक बात पूछने वाली हूँ आपसे कि सुबह से जब आप उठते हैं तो कितनी बार आप अपने फोन को आपने टच किया होगा? 10 बार, 20 बार, 50 बार या 100 बार? शायद खुद को भी याद नहीं है ना। और फोन क्या, हम तो खुद को ही भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में जरूरत है कि हम थोड़ा सा समय खुद को दें। आपको कभी कभी नहीं लगता कि भाई आधा घंटा, एक घंटा हम बैठ जाएं, खुद के लिए कुछ तो कर लें जो हमें अच्छा लगता है? और थोड़ा सा फ्री बैठकर कुछ ऐसा करें जो हमें सुकून दे। तो दोस्तों, आज हमें बताना है ये कि आप अपने हेक्टिक शेड्यूल में से अपने लिए टाइम निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, ये भी बताना है। जी हाँ, निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपको हमें बताना है। और अगर आप अपने हेक्टिक शेड्यूल में से आप अपने लिए टाइम निकालते हैं तो उस टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? कुछ ऐसा जो आपको सुकून देता हो। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। कभी कभी कोई बैठता है, बैठ के गाना लगा लिया, गाना सुनने लगा, या उसको डांस करना अच्छा लगता है, डांस करने लग गया। किसी को कुकिंग का शौक होता है, कोई घूमने निकल। तो आपकी क्या है, आप क्या सोचते हैं और आप क्या करना पसंद करते हैं, बस आपको बताना है। कहाँ? fmakashwani@gmail.com पर। आप लिख भेजिए हमें मेल्स, क्योंकि आपके मेल्स का है हमें बेसब्री से इंतजार। और साथ ही जब मेल्स आप लिख रहे हो ना, तो ये प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करिए जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जितने भी हमारे लिसनर्स सुनेंगे उनको भी बहुत पसंद आएगा।

बेहतरीन सा ट्रैक है दोस्तों, कि जब भी इसको सुनो ना तो दिल इतना खुश हो जाता है। और मतलब मैं ये पक्का कह सकती हूँ कि आपने भी इस ट्रैक को खूब इंजॉय करा होगा। और जैसा कि हमने आपको एक टॉपिक दिया था, उस टॉपिक का एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास मेल्स की तो कतार लग गई है, लेकिन जितने लिसनर्स अभी तक नहीं सुन पाए टॉपिक को, वो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई आजकल हमारी लाइफ इतनी हैक्टिक हो गई है कि हम खुद को भूलते जा रहे हैं और अपने लिए हम दो पल का भी टाइम नहीं निकालते। तो आप क्या उस हैक्टिक शेड्यूल में से अपने लिए टाइम निकालते हैं, और अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं उस टाइम पे कि जो आपको सुकून दे। तो देखिए, हमारे पास मेल आ चुके हैं और हम मेल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और मेल आईडी, मैंने टॉपिक तो बताया लेकिन मेल आईडी मैं भूल गई बताना अभी दोबारे में, तो मैं फिर से बताती हूँ आपको अपनी जो मेल आईडी है, fmakashwanilakhnow@gmail.com। और अब मैं पढ़ती हूँ आपके मेल्स। जी हाँ, हमारे पास पंकज गुप्ता जी ने हमें मेल कर दिया है। गुड आफ्टरनून शिखा मैडम जी, शिवा लालगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश से। मैडम जी, एक बार टॉपिक फिर से बता दे। तो पंकज जी, अभी हमने वही काम किया है कि एक बार टॉपिक आपको बताया है कि अपने हैक्टिक शेड्यूल में से आप अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं, और अगर निकालते हैं तो उस टाइम में ऐसा क्या करते हैं जो आपको खुशी देता है, आपको सुकून देता है। तो पंकज जी, हमने रिपीट कर दिया है।

और हमारे पास अनिल कुमार जी ने भी मेल कर दिया है। जिंदगी खूबसूरत तब लगती है जब हम शिकायतों से ज्यादा छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाते हैं। शिखा मैडम जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? 12 बजे से आपको सुन रहे हैं, मुझे आपकी आवाज़ शो करने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। टॉपिक से मैं कहना चाहता हूँ, शिखा मैडम जी, मैं टाइम निकालता हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे पहाड़ों की वादियों में घूमने का बहुत शौक है, मैं लॉन्ग ड्राइव पर बाइक से घूम कर आता हूँ। शिखा मैडम जी, अरे भाई मैडम जी सुनकर ना मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जा रही हूँ भाई। अपने फ्रेंड्स को इतना मैडम नहीं कहा जाता है, आप एक बार मैडम लिख सकते हैं। आप भी उत्तराखंड आइए, आपको भी साथ में खूब घुमाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही, और बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे तो ज़रूर घूमेंगे। फ्रॉम ग्राम गैंडा खाली नंबर 1 टनकपुर, जिला चंपावत, उत्तराखंड से इन्होंने हमें मेल किया। थैंक यू सो मच अनिल कुमार जी, आपने हमें मेल किया। और बाबू अंसारी जी ने हमें मेल कर दिया है, उसके बाद हम एक प्यारा सा गाना आप तक पहुंचाएंगे, और इन्होंने बहुत ही प्यारा सा मेल भेजा है। थैंक यू सो मच इतना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। इन्होंने एक एक फ़ोटो भेजी है, उसमें मेरी फ़ोटो मतलब इन्होंने वो करके भेजा है। शिखा मैम जी, आपकी आवाज़ शानदार है भैया, आप हम तो क्या शानदार हैं, हमारे जितने लिसनर्स हैं वो शानदार हैं, इतने प्यार से आप इतने एहसास से हमसे जुड़ते हैं। इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून शिखा मैम, कैसी हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। टॉपिक पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने काम के बिजी शेड्यूल में अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूं, मगर मुझे म्यूजिक का और गाने सुनने का बड़ा शौक है, इसलिए मैं गाने सुनता रहता हूँ और साथ ही साथ FM रेनबो सुनता रहता हूँ। बस यही चीज़ें हैं जो मुझे सुकून देती है। और मैम, पोस्टर पूरा पढ़ दीजिएगा मैम जी, तो मैंने पोस्टर पढ़ दिया है। 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास, होठों पे तेरी बात। शिखा मैम जी, आपकी आवाज़ शानदार, आपकी प्रस्तुति है लाजवाब, यही हम लिसनर सुनते रहेंगे लगातार। अरे वाह, इतना मतलब लिरिकल वे में इन्होंने लिखा है। और इन्होंने लिखा है कि मैं टाइम नहीं निकाल पाता, जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया, तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के हमें मेल कर दिया, और इतना प्यारा, इतना डेकोरेटिव मेल। और अभी हम मेल्स तो आपके पढ़ेंगे आगे, और इससे पहले एक गाना भेज दें आप तक, क्योंकि भाई इंटरटेनमेंट है जो ना, वो रुकना नहीं चाहिए, एक गाना तो इंजॉय करना बनता है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: जी 1:33 का वक्त और आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। और आज का इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैं भाई आपकी जो मेल्स है ना उसको पढ़ के इतना खुश हो रही हूँ कि सब इतने अच्छे अच्छे अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ। तो अभी हम पढ़ते हैं वो व्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं कि आज का टॉपिक एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का आ रहा है ये मेल कि मैम टॉपिक नहीं सुन पाए तो आज का टॉपिक यही है कि भाई आपका एक तो हैक्टिक है, बहुत शेड्यूल है ना, सभी का बहुत हैक्टिक है, लेकिन उस हैक्टिक शेड्यूल में आप अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं और निकालते हैं तो ऐसा क्या करते हैं आधे घंटे में, एक घंटे, दो घंटे, जो जितना भी आप समय अपने निकालते हैं उस घंटे में आप क्या करते हैं, उस टाइम पे आप क्या करते हैं जो आपको सुकून देता है। भाई अब हमारे लिसनर्स इंतजार कर रहे हैं कि शिखा भाई मेल पढ़ दो, बहुत बातें कर रही हो, मेल क्यों नहीं पढ़ रही हो। तो भाई ये लीजिए आपका मेल। आसिफ ने हमें मेल लिखा है, मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से, सुन रहा हूँ, टॉपिक फिर से बता दीजिए शिखा दीदी जी। तो भाई हमने अभी रिपीट करा है टॉपिक, आपको अपने जरूर से सुना होगा और आपको मेल भेज

है कहाँ, fmakashwani@gmail.com पर। और हमारे पास एम के राज जी ने हमें मेल कर दिया है। एम के राज सेवा में शिखा मैम जी, कार्यक्रम होटो पे तेरी बात शिखा मैम जी को मुनेश कुमार राज की तरफ से प्यार भरी शुभ दोपहरिया जी। थैंक यू, आपको भी शुभ दोपहरिया। मैंने आपका कार्यक्रम होटो पे तेरी बात रोज सुनता हूँ, बहुत ही शानदार और दिल को छू लेने वाला कार्यक्रम है। आपकी आवाज़ और अंदाज दोनों ही लाजवाब हैं, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। जैसे सुबह शाम टहलना, योग और व्यायाम करना, दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना, हंसी मजाक करना, अच्छी किताबें पढ़ना, परिवार के साथ समय बिताना, मैम आपके कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए कम है। आप और आपकी टीम को दिल से बधाई। मेरे सभी दोस्त सतीश पांडे व कन्हैया लाल पांडे ग्राम पटेरा लखीमपुर खीरी भी आपके कार्यक्रम के बड़े फैन हैं, तो थैंक यू सो मच। आप, मैं कहती हूँ ना कि भाई आपसे मिलकर, आपसे बातें कर इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है कि शायद ही वो खुशी किसी के साथ मिलती हो। आपके स्टेशन के श्रोता मुनेश कुमार राज, ग्राम भानपुर पोस्ट गोपालपुर जिला लखीमपुर खीरी। भाई देखिए, पढ़ना मेल पूरा पड़ता है क्योंकि जो हमारे लिसनर्स हैं ना वो हमसे बहुत खफा हो जाते हैं। तो एक और मेल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम एक गाना आपको सुनाएंगे, फिर अलॉट कराएंगे और फिर से मेल पढ़ेंगे आपके। तालिब अंसारी राजा कटरा बाराबंकी से मेल किया है। गुड आफ्टरनून शिखा जी, सोने के वक्त हमको मोबाइल चलाना पसंद नहीं, बस हाँ 5 मिनट बहुत बस सो जाते हैं, उठने के बाद मैं फ़ोन नहीं देखता हूँ। सुबह टहलने और एक कप चाय बस काफ़ी है सुबह का रूटीन। टी मेरी जान है, मुझे चाय बहुत पसंद है। गीत बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं शिखा जी, सब मस्त सॉन्ग हैं और आपके लिए भी टी। वो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लग रहा है। साथ में इन्होंने बिस्किट भी भेजे हैं भाई, थैंक यू सो मच, इतना प्यार संजो कर मेल्स के थ्रू भेजने के लिए। थैंक यू सो मच तालिब जी। और एक और मेल पढ़ लेते हैं भाई। मेरा मन करता है ना कि भाई जितने हमारे लिसनर्स हमें मेल कर रहे हैं पहले उनका मेल पढ़ लिया जाए फिर गाना पहुँचाते हैं। तो नायला शहजादी जी ने हमें मेल किया है। हेलो सर, नहीं हूँ भाई, मैम हूँ। हेलो मैम, गुड इवनिंग, मैं नायला अंसारी लखीमपुर खीरी से। कैसी हैं आप शिखा मैम? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुबह का रूटीन मेरा बुक पढ़ना था, उठ के पसंद है, मोबाइल तो दूर रखती हूँ। अच्छा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी शामिल करें। साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, गुलफसा सिद्दीकी, तालिब अंसारी बाराबंकी वाले, आसिफ अंसारी हैदराबाद से, बाबू अंसारी वकील मंसूरी। तो भाई आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतना प्यार भरा हमें मेल लिखा है और अभी हम मेल पढ़ते हैं आपके। जी हाँ, अभी आपके मेल्स लौट करा के जिन लोगों के नाम नहीं अभी मैंने भाई लिए हैं क्योंकि उनको बड़ा इंतज़ार रहता है कि मेरा नाम कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा। तो पहले तो ये गाना आ रहा है और ये मेरे तो दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है जितने लिसनर्स सुनेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इंजॉय करते हैं ये बेहतरीन सा ट्रैक आप तक।

जी तुम भी मुझसे प्यार कर लो, इतना बेहतरीन सा ट्रैक धड़कन मूवी से अभी आपने सुना। और ये जो ट्रैक है मतलब मेरे तो दिल के करीब है, लेकिन मुझे लगता है ये मुझे लगता है ये ऐसा फील होता है कि ये गाना इतना अच्छा है कि सभी के दिल को टच जरूर करता होगा। और प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ, और आपको एक टॉपिक दिया था कि भाई आप अपने बिजी शेड्यूल में से अपने लिए टाइम निकालते हैं, और निकालते हैं अगर तो क्या करते हैं उस टाइम पे, क्या करना पसंद करते हैं, और ऐसा क्या करते हैं जो आपको सुकून देता है। तो हमारे पास भाई बहुत ढेर सारे मेल्स आ चुके हैं, और अब है पढ़ने की बारी।

मेरी में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 104 FM मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 3 तारीख व दिन है गुरुवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोता तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायिका श्रीमती संगीत सोमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री तानिंग ताको और श्री हेमंता स्वर्गरी, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक श्री संगीताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रॉन्कन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रॉन्कन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रॉन्कन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: बैठक के दौरान

0: तमाम दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैसडैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
2: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक अज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
5: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्ण रेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आइए आज सुनते हैं देवशिष दास गुप्ता के स्वर में कबीर अमृतवाणी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुने थे भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत देवाशीष दास गुप्ता के स्वर में कबीर अमृतवाणी।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब?
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर द्वारा चंद बंगाली फिल्मी गीत।
3: अमर कथा।

0: श्रोता, इस बंगाली गीत के साथ ही विभिन्न प्रंत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत अभी ही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिला पर आधारित कार्यक्रम महिला मंच। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिए तवांग के मेजर रेलंगनो बॉब खाती म्यूजियम के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर सुक्षी सनली लेगुम सिंगफू और गैलरी गाइड सुक्षी लोबसांग चोकी के साथ हुए एक पेटवार्ता। विषय है वीरता का संग्रहालय और इसका महत्व। भेंट करता है दोर्जी ट्रेमा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग में स्थित मेजर रलिंगनाव बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आए हुए हैं और हम यहां पर

0: मुलाकात करने जा रहे हैं यहाँ के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर सनली लीगुम सिंपो जी से। तो सनली जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू।
0: श्रोताओं, शायद आपको याद होंगे कि इस संग्रहालय के उद्घाटन गत 31 अक्टूबर 2024 को हमारे देश के वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पाटिल, या उन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस संग्रहालय के उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आसाम के शहर तेजपुर से वर्चुअल माध्यम से किया गया। तो श्रोताओं, आपने इस संग्रहालय के बारे में सुने तो बहुत होंगे और आप में से कई लोग यहाँ पर दौरे भी कर चुके होंगे, लेकिन इस म्यूजियम के बारे में विस्तार से आज हम संजय जी से जानकारी प्राप्त करेंगे और आप तक हम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। जी हाँ, तो हम म्यूजियम में पहुँचने के बाद हमें सबसे पहले प्रवेश द्वार के सामने ही देखने को मिल रहे हैं कि द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन, तो इसकी विशेषता क्या है, इस बारे में संजय जी आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: आप म्यूजियम जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले सोल ऑफ इंडिया दिखेगा। तो इसका रीजन ये है कि सोल ऑफ इंडिया हमने इसलिए बनाया ताकि हम इंडिया को एक तरह से यूनाइट कर सके। तो हमने सोचा कि अगर हम इंडिया को यूनाइट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हमारे शेयर्ड स्ट्रगल्स, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स की जो कहानी है, उसी की मदद से हम हमारे इंडिया को ट्रूली यूनाइट कर सकते हैं। तो इसी वजह से सोल ऑफ इंडिया, जैसे ही आप म्यूजियम एंटर करेंगे तो आपको वो दिखेगा। एंड देन सोल ऑफ इंडिया पर आपको टोटल 36 कैस्क मिलेंगे। तो हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, सो होल ऑफ इंडिया से हमने कलेक्ट करके यहाँ पे सारी सॉइल रखी हुई है। ईच एंड एवरी लोकेशन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जगहों से कलेक्ट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने दीपा से कलेक्ट की है। दीपा पर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हमारा झंडा वहीं पर लहराया गया था, तो हमने दीपा से कलेक्ट की है। और फिर झारखंड जैसे जगहों से भी कलेक्ट की है, जहाँ पर नीलांबर और पीतांबर एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वहाँ पर उन्हें एक पैर पर हैंग कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, तो उस जगह से भी हमने कलेक्ट की है। तो हमारे रिसर्च के द्वारा हमने उस एग्जैक्ट पैर को ढूंढ निकाला, फिर हमने उसी जगहों से कलेक्ट। तो सिमिलरली सारी सॉइल्स ऐसे ही कलेक्ट की गई है। तो इस सॉइल को हमारे एक रॉयल अरुणाचल राइडर्स, एक ग्रुप ऑफ राइडर्स है, उन्होंने पूरी इंडिया ट्रेवल कर ये सॉइल्स कलेक्ट की है। टू बी प्रिसाइज, उन्होंने 25 डेज में 21 स्टेट्स कवर की है, और जो रेस्ट ऑफ द सॉइल्स है वो उनके बाइकर्स ग्रुप की कनेक्शन द्वारा यहाँ भेजी गई है।
0: जी जी, तो इस म्यूजियम के अंदर स्थित द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन हमें ये बताती है कि हमारे इस महान देश के लिए देश भर में जहाँ जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, तो उन पवित्र जगहों से हमारे अरुणाचल प्रदेश के राइडर्स ने उन पवित्र माटी को लेकर आए, और हम आज उन सारे जगहों पर जाकर देखना तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस संग्रहालय के अंदर आकर आप उन सारे पवित्र जगहों का दर्शन कर सकते हैं। जी चलिए, तो सनली जी, आप हम म्यूजियम के दूसरी सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं और आप हमें बताइए कि मेजर बॉब खाटिंग, अ लाइफ ऑफ वेलियर, क्या कहता है, क्या इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को और बाहर के लोगों को ये जरूर जानकारी है कि हमारे तवांग को भारत देश में शामिल करने में मेजर रालंगना बॉब खाटिंग जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, तो आप हमें बताइए।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर जब आप सोल ऑफ इंडिया देखेंगे, उसके बाद आपको मेजर खाटिंग की जो लाइफ हिस्ट्री है, उनके बारे में, उनकी लाइफ टाइमलाइन, वो सारी आपको देखने को मिलेगी मेजर खाटिंग की गैलरी पर। तो इस गैलरी पर हमने उनकी लाइफ फेसेस रखी है, तो सारी उनकी अचीवमेंट्स, जो पोजीशंस उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, और वो कहाँ पर पैदा हुए थे, वो सब। तो आपको अच्छी तरह से जानना है तो आपको खुद म्यूजियम पर आकर विजिट करके सब कुछ जानना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ, यहाँ पे आपको जब आप इस गैलरी पर आएंगे तो आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी, बिकॉज आप जो उन्होंने तवांग ले किया था वो शायद बहुत बड़ी बात है, और वो एक बहुत महान इंसान भी थे, बिकॉज एक ट्राइबल इंसान होके उन्होंने बहुत सारी पोजीशंस अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, वो एक टीचर थे, एक सोल्जर थे, पॉलिटिशियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर वो डिप्लोमेट भी, तो उसी वजह से हमने ये म्यूजियम उनकी याद में बनाया है। और उन्हें एक्चुअली 1957 पर पद्मश्री भी मिला था, तो वो मणिपुर के पहले ट्राइबल इंसान थे जिन्हें पद्मश्री मिला था। फिर उन्होंने अपनी एंड ऑफ करियर में, बिफोर रिटायरमेंट, वो एम्बेसडर टू बर्मा की तरह भी सर्व किए थे। उस समय भी वो एक ओनली ट्राइबल फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट ट्राइबल फ्रॉम इंडिया हु सर्व्ड एज एम्बेसडर टू बर्मा थे। एंड अगर आप

0: आगे मूव करते रहेंगे तो आपको उनकी पर्सनल आउटफिट्स देखने को मिलेगी, उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने यू नो मेजर कटिंग के बारे में मेमोरी शेयर करते हुए आपको देखने को मिलेगी इस गैलरी पर।
1: जी, हमें इस सेक्शन के अंदर आने के बाद ये पता चलती है कि मेजर खाचिंग ने अपने जीवन में किन पदों को प्राप्त किए थे, किन पुरस्कार को उन्होंने प्राप्त किए थे और उनके द्वारा उपयोग किए गए चीजें, उनके कपड़े और यहाँ तक कि उनकी असली आवाज हमें सुनने को मिलता है। और जैसे कि सनली जी ने कहा कि सचमुच हमें ऐसा लगता है कि मेजर खाचिंग यही है और हम उनके घर आए हुए हैं। और ऐसे ही हम सनी जी के साथ बातें करते करते अब म्यूजियम के तीसरे सेक्शन पर पहुंच चुके हैं जिसके नाम है द टेकिंग ऑफ द वंग 1951। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: तो मेजर खटिंग यहाँ पर 1951 पर आए थे और उन्होंने तवांग को 1951 पर ही तिब्बत से आजाद करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लाया था, बिकॉज एट दैट टाइम तिब्बत के अंदर था तवांग, इट वाज अंडर तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये जो टेकिंग ऑफ तवांग गैलरी है ये आपको पूरी कहानी इन अ वे, सो इट नरेट्स द होल स्टोरी ऑफ हाउ ही इंटीग्रेटेड तवांग इनटू इंडिया। तो उनकी जर्नी कैसी रही, कौन लोग थे जो इस इंटीग्रेशन पर इन्वॉल्व थे, वो सारी आपको देखने को मिलेगी। एंड दो जो लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन पे यू नो दे हैड हैंड इन दिस इंटीग्रेशन वाज जयराम दास दौलतराम, हु वाज देन द गवर्नर ऑफ असम, एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिकॉज ऑफ हिम वी आर लाइक इट वॉज रिकग्नाइज दैट तवांग नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इन टू इंडिया। सो ही वॉज द बिग ब्रेन बिहाइंड दिस होल ऑपरेट, दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल तवांग हिज लास्ट गिफ्ट टू इंडिया। एंड एस वी मूव ऑन, इस गैलरी पर आपको मेजर खटिंग की खुद की हैंड राइटिंग एंड अगेन इंटरव्यूज जहाँ पे पीपल आर शेयरिंग द मेमोरीज और देयर एक्सपीरियंस या जो उन्होंने फील किया था इंटीग्रेशन के वक्त, वो मेजर खटिंग के बारे क्या सोचते थे और तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे क्या सोचते थे, वो सारी आपको इस गैलरी पर देखने।
1: जी जी जी, अब हम म्यूजियम के अंदर यूं ही चलते हुए अब ऐसी एक मजेदार सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिसके नाम है मॉन्यूल ब्लेस्ड लैंड ऑफ द मोनपा, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं कि मोनपा जनजाति के लोग पुराने जमाने में किन चीजों के उपयोग करते थे, जैसे खाना बनाने के लिए, पहनने के लिए और कपड़े किस तरह से बुनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बुद्धिज्म के इतिहास। तो इस बारे में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगे और जो बाहर से पर्यटक आकर यहाँ देखते हैं उन सारे आर्टिफैक्ट्स को, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होगी कि इसे किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको जानना है तो आपको आगे डिजिटल सेक्शन की ओर बढ़ने होंगे और वहाँ पर आपको सारे चीज़ों को उपयोग किए जाने वाले वीडियो देखने को मिलेंगे।
0: सो दिस गैलरी इज कॉल्ड द हेरिटेज ऑफ मोन्यूल, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस गैलरी की एक यूनिक बात ये है कि जब आप आएंगे तो आप आर्टिफैक्ट्स को एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। यूजुअली आप जब म्यूजियम पर जाते हैं तो आप डू नॉट टच वाले साइन देखते हैं, पर इस गैलरी पर आप एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। तो आफ्टर आप वो गैलरी पर टच एंड फील करके आएंगे, उसके बाद आपको डिजिटल गैलरी देखने को मिलेगा। तो इस गैलरी के बिहाइंड थॉट प्रोसेस ये था कि आप वहाँ पर सब कुछ फील टच करेंगे और यहाँ आके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे डिजिटल कॉन्टेंट्स होंगे, तो आप यहाँ पे लाइफ ऑफ ब्रॉक पास देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ पे आरा बनाने वाली यूटेंसिल देखी होगी, तो फिर आप यहाँ पर देख सकेंगे कि आरा किस तरह बनाया जाता है। उसके लिए हमारे पास 2 TV पैनल्स है जहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। एनी अदर छुरपी कैसे बनती है, ब्रॉक पास कैसे जीते हैं, जो आप शिंखा पहनते हैं मोनपास लोग, तो वो कैसी बनती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड एट लास्टली वी हैव यहाँ पे जो होलोग्राम, दिस इज अ टेक्नोलॉजी, उसे होलोग्राम फैन कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड देन आपको एक AV डिस्प्ले देखने को मिलेगा, दैट्स ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, जहाँ पे आपको तोरग्या, जो यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो वो डांस फेस्टिवल और जो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका भी एक ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्टली आई फॉरगॉट टू मेंशन, लेकिन जो मोनपा गैलरी है वहाँ पे आपको वर्चुअल रियलिटी, दैट्स VR हेडसेट्स, वो भी आपको मौजूद दिखेंगे। तो वहाँ पे हमने 3 मोनेस्ट्रीज, जो तवांग के इन एंड अराउंड सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज की तरह जाने जाते हैं, दैट्स क्रोमतेन, किमनास और तकसंग, वो 3

0: यूरोपा के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे हमने इसीलिए रखा है क्योंकि इन मॉनेस्ट्रीज में जाने के लिए, एक तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज है, एंड अगर आपको वहाँ पे विजिट करना है तो इधर आपको बहुत हाइक करना पड़ता है या फिर फूड रिस्ट्रिक्शन से आप रसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते। तो बाहर से विजिटर्स आएंगे तो अगर वो दो तीन दिन के लिए आएंगे तो एक पूरा दिन वो इन मॉनेस्ट्री पे डेडिकेट नहीं कर सकते, या फिर जो बूढ़े लोग हैं यहाँ के या बच्चे हैं वो इतने स्ट्रेंथ वाइज इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो वहाँ पर जा सके, पर उन्हें फिर भी अगर वो म्यूजियम पर आएंगे तो बिना वहाँ जाए उनके मॉनेस्ट्री के दर्शन हो जाएंगे, उसी वजह से हमने वो रखा।
1: तो चलिए, हम एक ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं, एक ऐसी सेक्शन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें मेजर खाटिंग की असली स्वर सुनने को मिलते हैं, तो इस बारे में बताइए।
0: सो इस सेक्शन पे इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिजिटल गैलरी, तो यहाँ पे आपको मेजर खाटिंग की आवाज सुनाई देगी। तो वो 1985 पे उनके मृत्यु के 5 साल पहले वो तवांग फिर आए थे तवांग की कंडीशन चेक करने के लिए, तभी उन्होंने आकाशवाणी तवांग जो है वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी। तो उसी इंटरव्यू के बदौलत हम ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग हम उनकी आवाज़ आज सुन पा रहे हैं, बिकॉज प्रायर टू दिस उनकी कोई रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो कुछ मौजूद नहीं थी। तो इट्स ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग, वी आर एबल टू लिसन टू हिज वॉइस राइट हियर इन द म्यूजियम। एंड आफ्टर आप उनकी आवाज़ सुनेंगे फिर आपको फ्लैग इन प्लान द फ्लैग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो हमने प्लान द फ्लैग इसीलिए बनाया था बिकॉज उन्होंने तवांग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर झंडा हमारा इंडियन फ्लैग गाड़ कर ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था यहाँ पर तवांग पर। तो हम हमारे विजिटर्स को वही सेम फीलिंग जब मेजर खाटिंग ने झंडा प्लांट किया था तो वो सेम फीलिंग हम उनको देना चाहते थे, उसी वजह से हमने ये सेक्शन प्लान द फ्लैग बनाया है जहाँ पर आप अपना खुद का झंडा गाड़ कर वो सेम फीलिंग शेयर कर सकते। फिर आप तो अभी हम टूवर्ड्स द एंड आ चुके हैं, तो आफ्टर प्लान द फ्लैग आपको पिक्चर ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगी जहाँ पे आप सरदार पटेल एंड मेजर खाटिंग जो दो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ है जिसके वजह से हम यहाँ तवांग पर खड़े हैं एंड इट्स पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप उन दोनों के साथ भी फोटो ले सकते हैं। एंड लास्टली हम फिर एंट्री फॉयर पर ही आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक कोट भी देखने को मिलेगा, तो वो सेम आकाशवाणी तवांग वही सेम 1985 इंटरव्यू की है जहाँ उन्हें इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप जो यूथ्स ऑफ तवांग हैं उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं। तो आपको वो कोट दिखेगा जो मेजर खाटिंग यहाँ के यूथ्स के लिए छोड़कर गए थे।
1: जैसे कि सनली जी ने म्यूजियम के अंदर चलते चलते हमें इस म्यूजियम की विशेषताएं के बारे में बताएं, तो हमें काफी अच्छे लगे इस बारे में जानते हुए। और अब हम वापस एक बार प्रवेश द्वार के सामने पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम यहां से अभी जा नहीं रहे हैं बल्कि हमें कुछ और सेक्शन के बारे में और जानने हैं, क्योंकि हमारे अभी गैलरी गाइड लोबसांग छिकी जी से मुलाकात करनी तो बाकी है। तो जी हाँ, हम अब लोबसांग छिकी जी से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ के गैलरी गाइड। तो लोबसांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स रखे हुए हैं जिसे मेडल सेक्शन कहते हैं, तो इन मेडल्स की क्या विशेषता है आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: ये सेक्शन जो उनका मेडल सेक्शन है, लाइक वो कुछ गिना चुना इंसानों में से था जिनको दोनों गवर्नमेंट से मेडल मिला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी मिला था और इंडियन गवर्नमेंट से भी मिला था। ये उनका फर्स्ट मेडल है, मिलिट्री क्रॉस मेडल, और इनको रिसीव किया था 1944 में और इसको दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर ने। और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। और उनका वर्मा स्टार मेडल है, उनको इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल मिला है, उनको पद्मश्री मिला है, और उनको पद्मश्री मिला है 1957 को, और उनको अरुणाचल रत्न भी मिला है। उनको अरुणाचल रत्न मिला है इन 2020-21 और वो दूसरा इंसान था जिनको अरुणाचल रत्न मिला। और फ्रॉम 1987 टू 2020-25 अभी तक में सिर्फ तीन ही को मेडल मिला है और वो दूसरा इंसान है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको उनका अचीवमेंट सब यहाँ पे आप देख सकते हैं और उनका आवाज सुन सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं पे उन्हीं के सामने बैठे हो, उन्हीं का आवाज सुन रहे हो।
1: हम आगे बढ़ते हुए अब इस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिसके नाम है 1962 द वैलियंट वॉरियर्स। इस बारे में फिर हम छिकी जी आपसे जानेंगे, इस बारे में आप हमें बताएं।
2: ये जो सेक्शन है वो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है, और जैसे कि आप सभी को मालूम है 1962

0: में इंडिया में वार हुआ था वो दो साइड से, एक अक्साई चीन और एक तवांग से। और तवांग में उन्होंने असम तक पूरा चाइनीज आर्मी चले गए थे, पर जो अक्साई चीन है वहाँ पे उन्होंने 2400 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा उन्होंने कैप्चर कर लिया था और वो अभी भी उन्हीं के अंदर में है। और यहाँ पे एक पर्सन है, उसका नाम है नीलम तिपी। वो पूरे अरुणाचल से वो अकेला ही था जिन्होंने 1962 वार में हिस्सा लिया था। ये निशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और अगर आप यहाँ पे 1962 गैलरी में आते हो तो आपको यहाँ के 1962 वार के ऊपर में उनके बैकग्राउंड के बारे में सब पढ़ने को मिलेगा, न्यूज कवरेज को देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे उन्होंने कौन से एरिया से उन्होंने तवांग में एंटर किया था वो सब मैपिंग देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे 1962 वार में जितने भी गन्स वेपन्स यूज हुआ है वो सब आपको ओरिजिनल देखने मिलेगा। और 1962 वार में जो शहीद हुए थे और उनको जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है उन सभी को आपको देखने मिलेगा ये गैलरी में, और शहीदों के नाम। और यहाँ पे कुछ मूवीज है जो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है, और कुछ बुक्स जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे रेजिमेंट्स है जिन्होंने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया, उनका सिंबल है। और यहाँ पे 56 रेजिमेंट ने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया था।
1: जी, तो अब हम एक बार फिर द लैंड ऑफ मोनपास के सेक्शन में पहुंच चुके हैं। तो इसकी जो डिजिटल सेक्शन है इस बारे में हमें संली जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि छुकी जी आप हमें एक बार फिर यहां पर रखे गए आर्टिफैक्ट्स है, कपड़े है पुराने जमाने के, और बुद्धिज्म के इतिहास है, तो इन सभी चीजों के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जैसे कि 1951 में मेजर बॉब खातिंग यहाँ आए, उन्होंने तवांग को इंडिया के साथ मर्ज किया, और उसके बाद 1962 का वार जो जवान इतने शहीद हो गए, और ये सब किसके लिए? क्योंकि ये हमारे जो यहाँ तवांग के जो लोकल है, यहाँ पे जो ट्राइब पाया जाता है मोनपा, उनके लिए, उनका कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उन यहाँ के मोनपा पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा यही मोटिव है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आए उनको दिखाए कि हमारा पहले कल्चर क्या हुआ करता था, यहाँ के लोकल जो है, यहाँ के लोग है जो क्या पहना करते थे, क्या चीज़ें यूज़ किया करते थे, और जो यहाँ के हमारे यहाँ के जो इवन लोकल से अगर वो भी यहाँ आते तो उनको अपना ट्रेडिशन को देखने को मिलता है। जो कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा चीज़ है जो अभी सभी जगह में पाया नहीं जाता है, और कुछ ऐसा चीज़ है जो जिन्होंने यहाँ के जो अभी यूथ है उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, तो वो सब यहाँ पे दिखाया गया। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस है, यहाँ पे जैसे कि लेदर बैग है, और यहाँ पे जो कॉइन है जो पहले यूज हुआ करता था, यहाँ पे वेट मशीन है जो पहले यूज हुआ करता था, स्टोरेज बॉक्स जो अंदर से बैम्बू से बना होता है और बाहर से उसको स्किन से कवर रहता है, और यहाँ पे लोकल हाउस को 3D पेंटिंग में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे लोकल घर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे हैंडक्राफ्ट कैसे हुआ करता है, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे VR भी है, वर्चुअल रियलिटी, तो ये ऐसा है कि यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये ऐसा मोनेस्ट्री का व्यू कैप्चर किया है जहाँ पे टूरिस्ट इजिली नहीं पहुँच पाते या उनके टूर में वो कवर कर नहीं पाते। और कुछ ऐसा जगह है जैसे कि क्रोमतिन गोनपा जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच पाता है और वहां पे चल के जाना पड़ता है, तो आपको यहां पे ही बैठ के उसको जैसे कि आप वहीं पे हो ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो यहां पे ये सब दिखाया गया है, और इवन यहां पे हमारा कल्चर जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो सब बताया गया है, यहां पे लिखा गया है। और जितने भी हमारे यहां के 7th century से जैसे कि मेराकलामा लोटे ग्याजो उनके बारे में, मेराकलामा लोटे ग्याजो जैसे कि तवांग मोनेस्ट्री बनाए उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि 7th century में केप कलावांपो थे उनके बारे में लिखा गया है, गुरु पद्मा समावा के बारे में लिखा गया है, बुद्धिज्म कैसे आए और बुद्धिज्म से पहले हम क्या प्रैक्टिस करते थे, और यहाँ पे हम ये सब अपना जो मोनपा का कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब यहाँ पे शो किया गया है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी, तो आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम यहाँ मेजर बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आने के बाद, यहाँ सारे चीज़ों को देखने के बाद और आप दोनों से मिलकर बातें करने के बाद हमें ये समझ में आती है कि मेजर खाटिंग ने तवांग को भारत में शामिल करने में कितने कठिनाइयों का सामना किया और उनके कितने बड़े योगदान हमारे लिए रहे हैं, और उन्हीं के मेहनत के बदौलत आज हम अपने आप को पूरे गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम भारत के सबसे सुंदर जिला में से एक तवांग से हैं और

0: साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उनके मेहनत, उनके परिश्रम, उनके योगदान को हमेशा के लिए याद रखना है और उनके सारे चीजें, उनके सारे यादें इस म्यूजियम में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और हम तवंग वासी मेजर खाटिंग को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। धन्यवाद।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच के अंतर्गत तवंग के मेजर एलमनो बॉब खाटिंग म्यूजियम के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर सुक्षी सनी लेनगुम सिंगफू और गैलरी गाइड सुक्षी लोकसान चौकी के साथ हुए एक भेंट वार्ता विशेष।

0: Tawang Kemetarelam no Bob Khating Museum ke Museum Coordinator Sukshi Stanley Lingum Singfu aur Gallery Guide Sukshi Loksan Chaki ke saath hue ek bhetvarta vishay tha Virta ka sangrahalay aur iska mahatv bhet karta the Dorji Trema.
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय दोपहर के 3:52 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं, अमर मलिक के संगीत पर फिल्म रॉय से अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, कपूर एंड सन्स फिल्म से आशीष कौर और अरिजीत सिंह की आवाजों में। इस गीत को रचा है डॉक्टर रविंदर कफीर ने तथा संगीत है तनिष्क बख्शी ने।

अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया की स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स OTT पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर

तमाशा फिल्म से श्रोताओं भी आपने मोहित चौहान की आवाज में एक गीत का आनंद लिया। इस गीत के रचयिता इशाद कामिल तथा संगीत दिया था एआर रहमान ने। आइए कार्यक्रम को यूं जारी रखते हुए सुनते हैं। अरमान मलिक, पलक मुच्छर और अमल मलिक की आवाजों में फिल्म सनमरे से कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार मनोज यादव तथा संगीत दिया है अमल मलिक ने।

हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें, और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।

प्रीतम के संगीत पर श्रोताभि आपने फिल्म हॉलीडे से अरिजीत सिंह की आवाज में एक गीत सुना। आइए कार्यक्रम में अगला गीत का आनंद लेते हैं। अनविता दत्त के रजे पोल पर फिल्म क्वीन से अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह की आवाजों में।

मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से वेव्स OTT ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माई वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें। अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें। एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।

श्रोता, अभी आपने गौरव और सुमित के संगीत पर फिल्म नोटबुक से विशाल मिश्रा की आवाज में एक गीत सुना और इसी गीत के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अभी ही पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिए शेख चिन्ना मौलाना से शहनाई वादन, राग है पूर्वी कल्याणी और कापी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत। शेख चिन्ना मौलाना से शहनाई वादन राग था पूर्वी कल्याणी और काफी। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिन्दी में समाचार 4:45 पर तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेबर के साथ वार्ता की। अरुणाचल प्रदेश की रेतुसा विमेंस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामसाई द्वारा 17 मीट्रिक टन बकवीट कानपुर स्थित जेएस इंटरनेशनल को भेजा गया। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने वित्त योजना एवं निवेश और ग्रामीण कार्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री की व्यापक राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम के संशोधित दिशा निर्देशों पर चर्चा हुई। सेवानिवृत्त अरुणाचल अग्निवीरों को अब अरुणाचल प्रदेश पुलिस सशस्त्र पुलिस बटालियन IRBN जैसे विभिन्न भर्तियों में 20% आरक्षण दिया जाएगा। इंडिगो एयरलाइन ने ईटानगर और गुवाहाटी के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। नई सेवाएं आगामी 10 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी स्थित दोनों पोलो हवाई अड्डे की सुरक्षा संभालने के लिए पूरी तरह तैयार। अरुणाचल प्रदेश की लिपिन अर्थ का चयन 24वीं एशियन कैडेट जूनियर एवं अंडर 21 कराटे चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन

0: और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम में प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के समर्पण आयाम और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: श्री मोदी ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक है। उन्होंने कहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम ने हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि वे 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ MOU हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के IMEC इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
0: अरुणाचल प्रदेश की महिला किसानों के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत रेतुसा विमेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड WFPCL नामसाई द्वारा 17 मीट्रिक टन कुट्टू यानी बकवीट कानपुर स्थित GS इंटरनेशनल को भेजा गया है। यह पहल राज्य में स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृषि वस्तुओं को राज्य के बाहर बड़े बाजारों से जोड़ने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। बकवीट की खरीद लोअर दिबांग वैली, लोहित और नामसाई जिलों की महिला किसानों से की गई है। इस कार्य में अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ARSRLM ने सुविधा और सहयोग प्रदान की। बड़ी मात्रा में कृषि उपज का एकीकरण और सीधे बाजार से जुड़ा किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के साथ साथ कृषि उत्पादों के सामूहिक विपणन को मजबूत करने में भी सहायक होगा। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने RWT मंत्री PD सोना, सलाहकार चाउ जिग्नू नामचुम तथा वित्त, योजना एवं निवेश और ग्रामीण कार्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के व्यापक राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम के सिद्धांत को दिशा निर्देश पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की है कि बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के बाद संशोधित दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी गई है। इस कार्यक्रम से ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दायरे से बाहर हो गए हैं। इस अवसर पर श्री मेन ने जोर देकर कहा है कि बेहतर स्तर के शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, बाजारों और विभिन्न अवसरों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करें।

सकती है। सेवानिवृत्त अरुणाचल अग्निवीरों को अब अरुणाचल प्रदेश पुलिस, सशस्त्र पुलिस बटालियन IRBN, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं, मिनरल गार्ड्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, विशेष टाइगर सुरक्षा बल, फॉरेस्टर्स और जेल वार्डन्स की भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह आरक्षण टीम अरुणाचल की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें सेवा का सम्मान करते हुए अवसर प्रदान करना शामिल है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र की सेवा कर चुके अग्निवीर आगे भी राज्य के लोगों को अपनी सेवा प्रदान करते रहें। इंडिगो एयरलाइन ने ईटानगर और गुवाहाटी के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। एयरलाइन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार नई सेवाएं आगामी 10 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। इंडिगो के ईस्टर्न रीजन के अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार गुवाहाटी के माध्यम से प्रस्तावित कनेक्टिविटी से ईटानगर के यात्रियों को दिल्ली, कोलकाता और देश के कई अन्य प्रमुख महानगरों तथा वाणिज्यिक केंद्रों तक बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित कनेक्टिंग डेस्टिनेशन में बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, लखनऊ, जयपुर और अहमदाबाद शामिल।

0: की उम्मीद है। इंडिगो के ईस्टर्न रीजन के अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार गुवाहाटी के माध्यम से प्रस्तावित कनेक्टिविटी से ईटानगर के यात्रियों को दिल्ली, कोलकाता और देश के कई अन्य प्रमुख महानगरों तथा वाणिज्यिक केंद्रों तक बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित कनेक्टिंग डेस्टिनेशन में बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, लखनऊ, जयपुर और अहमदाबाद शामिल है। इसके अलावा एक अन्य शहर को भी जोड़े जाने का प्रस्ताव है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। इस प्रस्तावित विकास का स्वागत करते हुए अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ACCI ने कहा है कि बेहतर हवाई संपर्क से विशेष रूप से कारोबारी, उद्यमी, विद्यार्थी, पर्यटक, पेशेवर और आम जनता लाभान्वित होंगे। साथ ही इससे ईटानगर के अरुणाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में स्थिति और मजबूत होगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अब अरुणाचल प्रदेश के होलोंगे स्थित दोनों पोलो हवाई अड्डे की सुरक्षा संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। CISF के डिप्टी इंस्पेक्टर किम ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। ये मुलाकात दोनों पोलो हवाई अड्डे पर CISF की तैनाती की चल रही प्रक्रिया के संबंध में हुई। CISF द्वारा औपचारिक रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने का उद्देश्य विमानन सुरक्षा को मानकीकृत कर और मजबूत करना है। अरुणाचल प्रदेश की लिपिन अर्थे का चयन 24वीं एशियन कैडेट जूनियर एवं अंडर 21 कराटे चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। ये प्रतियोगिता 6 से 10 सितंबर तक जॉर्डन में आयोजित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने लिपिन अर्थे को चयन पर उन्हें बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तनु शर्मा को जापान की तोमोका मियाज़ाकी से हार का सामना करना पड़ा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत की विश्व की नंबर वन ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Apugapak. India and Belgium today exchanged several agreements, including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy, cybercrime and diplomatic training. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with his Belgian counterpart Bart De Wever in New Delhi this afternoon. Both leaders discussed the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. In his press statement, Prime Minister Modi stated that shared democratic values, market economy and people-to-people ties make India and Belgium natural partners. Modi recalled that he visited Belgium 10 years ago and expressed pleasure that the partnership has made remarkable progress over the past decade. The Prime Minister said both countries will achieve doubling of trades in next 5 years. Prime Minister Modi said a clean energy future and reliable supply chain are shared priorities for both nations. He went on to add that the MOU signed today on renewable energy will give new momentum to sustainability cooperation. Earlier today, Defence Minister Rajnath Singh held a delegation-level talks with his Belgian counterpart Theo Franken. He said, India and Belgium have warm and enduring ties built on mutual respect, democratic values and a shared commitment to a rules-based global order. The Belgian Defence Minister stressed on taking India and Belgium friendship forward. During the meeting, the two ministers agreed to expand bilateral ties through defence cooperation dialogue, high-level visits, training and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman has pitched India's reform-led growth story to investors at a high-level business roundtable in New York, highlighting India's 7.8% economic growth in the first quarter of 2026-27 and the improved investment climate. Sitharaman said, India continues to be the world's fastest growing major economy.

0: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में। बस 1-3 मिनट का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वेव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वेव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 लाख रुपीज और नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपीज। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: मेरे में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और 104 FM MHz पर ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हो गए हैं। निजी श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरूखा। कार्यक्रम जरूखा में आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारण किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो आए श्रोताओं, पहले आपको आज के शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर मनपा कार्यक्रम जैदनेरी में सुनिए। टांग मठ के पुरलोपन लामा छोंगी और साथियों द्वारा शेदन तुंगवा शक्पा छोगा। आज शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। शाम 7:10 पर कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता। आज इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे एलआर इंग्लिश स्कूल टाउन के छात्र तंजन मंडूप से अंग्रेजी में एक कविता। आज शाम 7:11 पर साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक। आज इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे अलगायत्मिक संघ अन्य गायकों के गाये गाने फिल्म रिफ्यूजू से एक गीत, फिल्म सिर्फ तुम से एक गीत, फिल्म जानवर से एक गीत, हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से एक गीत और फिल्म एक रिश्ता से एक गीत। शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में आप सुन पाएंगे लक्ष्य फिल्म से एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 बजे आप आना ले पाएंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों में कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 4 सितंबर 2006

विस्को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिट्टी न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कल इस कार्यक्रम में पहले आप सुन पाएंगे गाने स्मृति तथा अनुप जलोटा के आवाज में चंद देवभक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रदेश संगीत। कल इस कार्यक्रम में आप आनंद ले पाएंगे संजा मार्फियो और साथियों द्वारा चंद बुगुन गीत। कल दोपहर 3:30 पर दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में कल आप सुन पाएंगे दोजी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के छात्र सुखशी संग न्यूटन से हिंदी में एक वार्ता। कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिएगा। फिल्म सिमरन से गुरु रंधवा और जोनिता गांधी, दोस्ताना फिल्म से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह, डियर जिंदगी फिल्म से जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी और फिल्म जब तक है जान से नीति मोहन के आवाजों में चंद फिल्मी नगमे। कल दोपहर 3:50 पर आधुनिक हिंदी फिल्म गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कल इस कार्यक्रम में आप आनंद ले पाएंगे फिल्म सत्यमेव जयते से अदीप असलम और तुलसी कुमार, टू स्टर्स फिल्म से चिन्मय श्रीपाडा और अरिजीत सिंह, ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शिफाली अल्वरेज, बधाई दो फिल्म से अरिजीत सिंह और रूपाली मोगे, फिल्म केदना से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी, फिल्म सूर्यवंशी से अरिजीत सिंह और नीति मोहन, केसरी फिल्म से अरिजीत सिंह और आशीष कौर, फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल, फिल्म फनी खान से सुनिधि चौहान और दिव्य कुमार और फिल्म लवाजकल से अरिजीत सिंह की आवाजों में चनाधुनिक हिंदी फिल्मी गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम नागरंग। शाम 4:45 पर हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे कार्यक्रम नमधलेरिम। 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। कल शाम 5:35 पर कार्यक्रम कुंसिल। शाम 6 बजे कार्यक्रम मेमसेरा। 6:10 पर कार्यक्रम जरुघा। कल शाम 6:20 पर मनपा कार्यक्रम जेदुंडेरिम। इस कार्यक्रम में कल आप सुन पाएंगे ताऊ मठ में हुए परम पावन प्रोफेसर जमदोंग लिमिछे द्वारा 6 सत्र गुरु योग की शिक्षाओं का शेष भाग। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता। इस कार्यक्रम में कल आप सुन पाएंगे कोम्बे नंबर प्राइमरी स्कूल खिमितंग के छात्र सुनीता नायक से अंग्रेजी में एक कविता। कल शाम 7:11 पर कार्यक्रम दर्पण। इस कार्यक्रम में कल आप आनंद ले पाएंगे राधेश्याम फिल्म से अरमान मलिक, फिल्म रॉय से अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा, कबीर सिंह फिल्म से अरिजीत सिंह, फिल्म सनमरे से अरमान मलिक, पलक मुच्छल और अमल मलिक, फिल्म एयरलिफ्ट से अमल मलिक, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार, फिल्म शेफ से अरमान मलिक और फिल्म एमस्टोनी द अनटोल्ड स्टोरी से पलक मुच्छल की आवाजों में चंद फिल्मी गीत। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम को अमिता रानी। इसमें कल आप सुन पाएंगे फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड से।

पापोन आतमाश फरीदी और साथियों की आवाज़ों में एक देशभक्ति गीत। कल रात 8 बजे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत, इसमें कल आप आना ले पाएंगे आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। रात 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स केंद्र, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 9:00 बजे। तो श्रोता, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम जरूर का आप यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मनपा में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

मेरे मैप किला और क्या चीज़ लेने के लिए थी मीटर ज्ञातिन के लिए चीनिस का उस आगेश्वरी तवांगी मुर लेकिन अनुभव देखते से क्रोने कर्म के लोगों दो दानुम में तो ये दिन लेरिम कोसुतुर देशुत लेरिमा तवांग कुंपक लोबन सुरप लामा सोनी से कोटी नंगो तुम्हारे शक्पक चौगा सनासा

Oh, my God.

Jump on the day, you know, that's what I'm talking about.

Thank you.

Thank you.

我操！

Thank you.

아멘.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Yeah, I'm one boy. Yeah, I've been there, I'm

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप

टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तनिषा क्रेस्ट्रो को हार का सामना करना पड़ा। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: S. Jaishankar in Kyiv. He said that the two sides discussed the need to restore freedom of navigation in the Black Sea and global food security. India has been concerned over a series of attacks on merchant ships in the Black Sea in the last few weeks. Prime Minister Narendra Modi today took stock of the situation of flood in his constituency, Varanasi. He spoke with District Magistrate Satyendra Kumar via telephone to obtain detailed information on the flood situation. He inquired about the arrangements being made in the relief camps. In women's cricket, India will take on Hong Kong in their second Group A match in the T20 Asia Cup at Dubai International Stadium in UAE today. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. In badminton, India's ace shuttler Kidambi Srikanth will face Hong Kong's Lee Chiuk Yu tomorrow in the men's singles quarterfinals at the China Masters Super 750 in Shenzhen. Srikanth beat Canada's world number 9 Victor Lai today. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं के आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एलआरएम स्कूल तवांग के छात्र टेंजिन नुंडुप से अंग्रेजी में एक कविता। कविता का शीर्षक है ब्यूटिफुल प्लैनेट्स।
2: Deshi Dile, my name is Tenzin Dunup and I am a student of class 5 from Elite English School. Today I am going to recite a poem and the title of my poem is Beautiful Planet, written by Lizzie Muller. I hope you all will enjoy this recitation. Let's begin. We live on a beautiful planet. Planet Earth is what we call home and it is our job to take care of her everywhere we roam. Pick up the garbage on the street. Be kind to all you meet. Appreciate the beauty around you. Make good choices every day. Go out of your way to take care of our beautiful planet. We ride our bike to school in the morning. Turn off the light when we go outside. We show respect for every living things. Let this song be our guide. We live on a beautiful planet. The third planet from the sun, and it is our job to take care of her, each and every one. Thank you.
1: श्रोता, अभी आपने कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत एलआर इंग्लिश स्कूल तवांग के छात्र तेंजिन दुनुप से अंग्रेजी में एक कविता सुना। कविता का शीर्षक था ब्यूटिफुल प्लैनेट्स। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:11 हो गए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अलगायकनिक संघ अन्य गायकों के गाये चंद फिल्मी नगमे। तो आइए कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम और अलगायकनिक की आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है जावेद अख्तर ने तथा संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।
3: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
4: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: समीर की रचे बोल पर श्रोता अभी आपने फिल्म सिर्फ तुमसे एक गीत का आनंद लिया। इस गीत के गायक थे कुमार सानू और अलका याग्निक।
1: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1 to 3 minute का वीडियो बनाओ और शो केस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31st अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
0: कार्यक्रम को यही जारी रखते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म जानवर से अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने तथा संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

श्रोता भी आपने फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में गीत सुना। इस गीत को रचा था समीर ने तथा संगीत दिया था नरीम श्रवण ने। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं, समीर के गीत पर फिल्म एक रिश्ता से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

साझा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के रैना केंद्र से प्रसारित विदेशी समाचार 7:45 पर रीजनल न्यूज 7:45 पर।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने के बीच हुई वार्ता के बाद जारी भारत बेल्जियम संयुक्त वक्तव्य में द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में बढ़ते विविधीकरण का स्वागत किया गया। भारत और बेल्जियम ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल, लाइफ साइंसेस, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक, अंतरिक्ष तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग की महत्वपूर्ण संभावनाओं की पहचान की। दोनों नेताओं ने कहा है कि दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बेल्जियम और आने वाले 10 वर्षों में $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य के बीच पारस्परिक लाभकारी साझेदारी के लिए व्यापक अवसर मौजूद है। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने आज विधानसभा अध्यक्ष देसाम पोंगते की अध्यक्षता में 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सदन के प्रस्तावित कार्यों पर विचार विमर्श किया गया और आगामी विधानसभा कार्यवाही के लिए कार्यक्रमों की सूची को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस तरह की चर्चाएं सदन के कामकाज को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे राज्य और लोगों से जुड़े विषयों पर सार्थक विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित होते हैं। अरुणाचल प्रदेश की महिला किसानों के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत रेतुसा विमेन फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड WFPCL नामसाई द्वारा 17 मीट्रिक टन कुट्टू यानी बकवीट कानपुर स्थित JS इंटरनेशनल को भेजा गया है। यह पहल राज्य में स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृषि वस्तुओं को राज्य के बाहर बड़े बाजारों से जोड़ने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। बकवीट की खरीद लोअर दिबांग वैली, लोहित और नामसाई जिलों की महिला किसानों से की गई है। इस कार्य में अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ARSRLM ने सुविधा और सहयोग प्रदान की। बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादन का एकत्रीकरण और सीधे बाजार से जुड़ाव किसानों को अपनी उपज को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के साथ साथ कृषि उत्पादों में सामूहिक विपणन को मजबूत करने में भी सहायक होती है। महिला एवं बाल विकास विभाग तवांग द्वारा आज डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला और बाल संरक्षण कानूनों तथा योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ साथ अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CDPO तवांग दोंदो पेमा ने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा, कल्याण, गरिमा और अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनों, योजनाओं और संस्थागत सहायता तंत्र के बारे में अधिक जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिभागियों से कार्यक्रम के दौरान प्राप्त जानकारी को व्यापक समुदाय तक पहुंचाते हुए जरूरत पड़ने पर उचित सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया। ईस्ट सियांग जिले के रायांग निवासी गोमिन पंगिंग दूरदर्शन नई दिल्ली से ग्रेड प्राप्त करने वाले अरुणाचल प्रदेश के पहले कथक नर्तक बन गए हैं। उन्हें प्रतिष्ठित बी ग्रेड कलाकार का दर्जा मिला है। इस उपलब्धि के अलावा गोमिन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली CCRT छात्रवृत्ति की भी प्राप्त करता है।

0: भारतीय सेना के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हुए तकसिंग तथा आसपास के गांव के लोग स्वेच्छा से आगे आए हैं। ग्रामीण वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एनएसी से लगे हुए दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों तक भोजन और अन्य आवश्यक सामान पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र में मोटर योग्य सड़क संपर्क उपलब्ध नहीं होने के कारण कठिन और दुर्गम पहाड़ी इलाकों के बावजूद ग्रामीण स्तर पर ही सामान ढोकर आवश्यक वस्तुएं सेना तक उपलब्ध करा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार भारतीय सेना को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। यह पहल स्थानीय लोगों में देश और देश की दुर्गम सीमाओं की रक्षा कर रहे सशस्त्र बलों के प्रति मजबूत देशभक्ति और प्रतिबद्धता की भावना को दर्शाती है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले इंटर क्लब बॉक्सिंग चैंपियनशिप के छठे संस्करण का आज नाहरलगुन स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI STC सेंटर में शुभारंभ हुआ। इस वर्ष प्रतियोगिता की थीम है कौशल एकाग्रता और खेल भावना की भावना का उत्सव मनाना। चैंपियनशिप में पूरे क्षेत्र के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की लिपिन अर्थ का चयन 24वीं एशियन कैडेट जूनियर एवं अंडर 21 कराटे चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। यह प्रतियोगिता 6 से 10 सितंबर तक जॉर्डन में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय अपुगापक। इंडिया एंड बेल्जियम टुडे रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू डीपनिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। Prime Minister Narendra Modi and the Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense, manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies, with Belgium as the 24th biggest economy in the world and India's ambition to become a $10 trillion economy in the coming years. Both leaders acknowledged abundant opportunities for mutually beneficial partnerships. Both leaders also welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-EU free trade agreement and called for its timely implementation. The two countries also signed a letter of intent to strengthen defense cooperation through regular exchanges, training, research and defense industrial partnerships. Minister of Education P.D. Sona today attended the 7th sitting of the Business Advisory Committee of the 8th Arunachal Pradesh Legislative Assembly, chaired by Speaker APLA Tesampongte. The meeting deliberated on the proposed business of the House and took up the finalization of the list of business for the forthcoming proceedings of the Legislative Assembly. In a social media post, Sona emphasized that such discussions are important for ensuring that the business of the House is conducted in a structured and effective manner, allowing adequate space for meaningful deliberation on matters concerning the state and its people. In a significant move to strengthen market access for women farmers in Arunachal Pradesh, the Ratusa Women Farmer Producer Company Limited, WFPCL Namsa, yesterday dispatched 17 metric tons of buckwheat to GS International Kanpur, marking another step towards connecting locally produced agricultural commodities with larger markets outside the state. The dispatch was carried out in the presence of Chairperson Onjini Namchum and under the leadership of Mimar Basar, CEO in charge Ratusa WFPCL. The buckwheat was procured from Mahila Kisans from Lower Dibang Valley, Lohit and Namsai districts with facilitation and support from the Arunachal State Rural Livelihoods Mission, ARSRLM. The bulk aggregation and direct market linkage are expected to help farmers secure better price realization while strengthening collective marketing of agricultural produce. An awareness program on women and child protection laws and schemes was organized by the Women and Child Development Department Tawang at the DC Conference Hall today, with participation from teachers of government and private schools and other stakeholders. Delivering the welcome address,

0: artist status. Apart from this milestone, Pangeng is also a recipient of the CCRT scholarship awarded by the Ministry of Culture, Government of India. He has completed Baba Prabhakar in Kathak from Prayag Sangeet Samiti, Allahabad, and trained under renowned Kathak Guru Gauri Divakar. In solidarity with the Indian Army, people from Taksing and nearby villages have voluntarily stepped forward to carry food and other essential supplies to army personnel deployed in the remote border areas along the LAC. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं भी आप सुने थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम देशभक्ति गीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जावेद अख्तर के रचे गीत पर फिल्म लक्ष्य से एक देशभक्ति गीत। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर, कुणाल गांजावाला और विजय प्रकाश ने।

श्रोता, अभी आपने कार्यक्रम देशभक्ति गीत में फिल्म लक्ष्य से एक देशभक्ति गीत सुना। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। निजी श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म में गीत में आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं। एक राज फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को रचा है मशरूर सुल्तानपुरी ने तथा संगीत दिया है चित्रगुप्ता ने। इस गीत की फरमाइश की है नलेश्वर नगर निर्मल महाराष्ट्र से पीएस नवकर, निर्मल नवकर, विशाल नवकर और मालकापुर से नारायण इंगल, सोपन तायरे और आशीष बुरेखर ने।

प्रेम लोग फिल्म से आए श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश का गीत। इस गीत को गाया है सुरेश वटकर और लता मंगेशकर ने। गीत को रचा है नरेंद्र शर्मा और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत की फरमाइश की है मजनू कटीला दिल्ली से, कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और साधना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने।

श्रोता, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरे सनम से मोहम्मद रफी के आवाज में। इस गीत की रचयिता है मसरूर सुल्तानपुरी और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। गीत की फरमाइश हमें मिली है वारिंगिरा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा और मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक और बलवीर सिंह से ही।

श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम फरमाइश का गीत, आनंद बख्शी के रचे बोल पर फिल्म मोहरा से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत की फरमाइश की है गवर्नमेंट ऑन सेकेंडरी स्कूल तवांग से निमा लामी, समसुन अंसरी, सरिंग छेकी, पेमा यांगजोम, तेंजी डोलकर, येशी छोटन, संगे थोमो, तशी यांगजिन, केसंग लामू, कंचो ड्रेमा, ओरियन थोमो, सरिंग यांगजोम, तेंजिन पेमा और लामू छोटन ने।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8 रात्रि 9:00। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी क्रिकेट के मैदान की, जहां महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला है जारी और भारतीय टीम को मिली है फिर एक बार शानदार और तेज शुरुआत। बैडमिंटन के कोर्ट पर आज किदांबी श्रीकांत तथा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी लेकर के आई है गुड न्यूज। चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में की है अपनी जगह पर की, वहीं अनाहत सिंह ने स्क्वाश के मैदान में फिर एक बार जीत की तरफ बढ़ाया है कदम। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में बना करके जगह और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने दूसरे दौर में दर्ज की है एक और जीत। पहला सेट हारने के बाद शानदार वापसी का किया प्रदर्शन और 2027 में होने वाली पहली ICC महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी अब श्रीलंका के स्थान पर भारत में की जाएगी आयोजित। आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए दुबई में इस समय खेले जा रहे भारत और हांगकांग के बीच महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के मुकाबले से, जहां तक यह समाचार मिलने तक भारत ने 8वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 69 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। अगर भारत की बात की जाए तो ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में इस टीम ने 94 रन से एक शानदार जीत दर्ज की थी थाईलैंड के ऊपर और टीम की नज़र जो है आगामी 5 तारीख को पाकिस्तान से होने वाले मुकाबले पर होगी। और इस क्रिकेट मुकाबले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, आज के मैच पर क्या खास अपडेट है आपके पास?
1: शक्ति, भारतीय टीम ने अपनी शुरुआत जो है बेहद शानदार करी है। आठवां ओवर चल रहा है और भारतीय टीम 74 रन बना चुकी है बिना किसी नुकसान के। दोनों सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शफाली वर्मा ने जहां 16 गेंदों पर 28 रन, वहीं स्मृति मंधाना ने 31 गेंदों पर 44 रन बनाए हैं। शफाली ने अपनी पारी में 2 छक्के भी लगाए हैं। इसी के साथ ये मैच जो है भारत बहुत अच्छी पोजीशन में होल्ड कर रहा है इस मुकाबले में और इस मुकाबले को जीतकर एक अपनी जो स्थिति है सेमीफाइनल के लिए उसको और मजबूत करना चाहेगा।
0: जी बिल्कुल, स्थिति मजबूत करना चाहेगा। हम एक बार स्थितियां भी जानना चाहेंगे, जो कि एशिया कप चल रहा है, मल्टी नेशन टूर्नामेंट है इस समय, जो कि अब धीरे धीरे हर टीम अपने मुकाबले खेल चुकी है, पूल में और पॉइंट टैली में क्या स्थिति नजर आती है?
1: ग्रुप ए की बात करें शक्ति, तो इंडिया अभी नंबर 1 पर बनी हुई है एक में से एक मुकाबला जीतकर, वहीं दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, उन्होंने भी एक में से एक मुकाबला जीता है। अगर भारत ये मुकाबला जीतती है तो भारत की राह सेमीफाइनल के लिए और आसान हो जाएगी और पाकिस्तान के मुकाबले पर उनको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं थाईलैंड और हांगकांग दोनों निचले पायदानों पर हैं। वहीं ग्रुप वी में श्रीलंका जो है वो 2 मुकाबले में से 2 जीत चुकी है और अपनी स्थिति जो है लगभग तय कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। वहीं बांग्लादेश भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है दूसरे स्थान पर एक में से एक मुकाबला जीतकर।
0: जी बिल्कुल, तो ये था पॉइंट टेबल का हाथ हल। हम एक बार श्रोताओं को वापस जरा मैच का स्कोर कार्ड बता देते हैं। भारत का पहला विकेट गिर गया है। पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाली शेफाली वर्मा 17 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 28 रन बना करके आउट हो गई। हालांकि उन्होंने अपना काम काफी हद तक टीम के लिए कर दिया और एक मजबूत शुरुआत टीम को दे करके पवेलियन लौटी है। भारत के लिए इस पूरे मुकाबले का, क्योंकि भारत को परसों पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतिम ग्रुप मैच खेलना है, उन तैयारियों के अनुरूप देखा जाए तो ये कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है भारत के लिए मैच?
1: भारत के लिए एक वार्म अप गेम की तरह साबित होगा पाकिस्तान के मुकाबले से पहले, क्योंकि पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में बहुत सारी गलतियां करी, जहां पर 46 रन के अंतराल में लगभग 7 विकेट भारत ने गंवाए थे और एक बहुत बड़े स्कोर करने से चूक गए थे। तो उन सब गलतियों पर ध्यान देते हुए जैसी आज शुरुआत मिली है, इसी को कैपिटलाइज करके एक बड़ा स्कोर जो है बनाने की ओर भारतीय टीम देखेगी।
0: जी बिल्कुल, भारतीय टीम चाहेगी कि एक बड़े स्कोर में तब्दील किया जाए शानदार शुरुआत को। और अब क्रिकेट के मैदान की एक और खबर की तरफ नजर डाली जाए, जो कि आई महिला क्रिकेट के ही मैदान से। 2027 में होने वाली पहली ICC महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी अब भारत में आयोजित होगी।

0: 14 से 28 फरवरी के बीच निर्धारित यह प्रतियोगिता पहले श्रीलंका में होनी थी, इसकी मेजबानी अब भारत को प्राप्त हो गई है। श्रीलंका से मेजबानी लेने का कारण श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड में सरकारी दखल के बाद प्रशासनिक सुधारों की जारी प्रक्रिया को बताया जा रहा है।
1: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बताया कि 6 टीमों के बीच खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट अब 2 वेन्यू पर आयोजित होगा। इनमें मुंबई का क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और वडोदरा का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शामिल है। आईसीसी ने कहा कि यह टूर्नामेंट पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन अब यह भारत में होगा, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जुलाई में आईसीसी के सालाना सम्मेलन में तय किए गए व्यापक सुधार कर रहा है। श्रीलंका क्रिकेट का कामकाज अभी एक अंतरिम ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की देखरेख में जारी है। आईसीसी ने यह भी बताया कि भारत को मेजबान के तौर पर चुनने से पहले एक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के प्रस्तावों पर विचार किया गया था। महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेगी। इनमें से शीर्ष 2 टीमें 28 फरवरी को होने वाले फाइनल में पहुंचेंगी। इन टीमों का चयन 6 जुलाई की क्वालिफिकेशन कट ऑफ तारीख पर आईसीसी महिला T20 टीम रैंकिंग के आधार पर हुआ है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो भारत के हिस्से एक और मेजबानी, एक बड़ी प्रतियोगिता और कई मायनों में खास होगी। सबसे खास ये होगा कि पहली बार महिला क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी देखने को मिलेगी। विशेष भारतीय खिलाड़ियों के लिए कितनी बेहतर बात है कि अपने घरेलू दर्शकों के बीच में आपको एक और बड़ा टूर्नामेंट देखने को और खेलने को मिलेगा।
2: शक्ति, अगर घरेलू सरजमी की बात करें तो 2025 विश्व कप में भारतीय टीम ने अपनी ही धरती पर आयोजित विश्व कप को जीता था। उसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से मैदान पर उतरती दिखाई देगी, जहां चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम T20 फॉर्मेट में अपना दमखम दिखाएगी। DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया वो मुकाबला अभी तक भारतीय दर्शकों की यादों में बसा हुआ है।
0: जी बिल्कुल, आपने हरमनप्रीत एंड कंपनी की बात की, वो शानदार जीत कैसे कोई भुला सकता है जब भारत ने विश्व कप अपने नाम किया था। और एक टाइट शेड्यूल जो है भारत का होना है, यहाँ से एशियन गेम्स और शायद कह सकते हैं कि इस T20 फॉर्मेट की पहली चैंपियंस ट्रॉफी को जीतकर भारतीय टीम उस T20 विश्व कप में जीत ना पाने की कसक को भी मिटाने का काम करेगी। क्रिकेट के बाद अब स्पोर्ट्स कैन में बात बैडमिंटन की। किदांबी श्रीकांत तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
3: किदांबी श्रीकांत ने आज पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा के विक्टर लाई को एक कड़े मुकाबले में 21-18, 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां अब उनका सामना हांगकांग की ली च्यूक्यू से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के पोपोव बंधुओं क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को 21-17, 22-24, 21-9 से हराया। अब ये भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और आंद्रे सकारू रश्मि सेन का सामना करेगी। हालांकि महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से 17-21, 21-18, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो का अभियान ताइपे के ह्यू क्वांग हॉन्ग और सु येन हुई से सीधे गेम में 18-21, 18-21 की हार के बाद समाप्त हो गया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कह सकते हैं कि चिराग और सात्विक की ये जोड़ी, जिसने 2022 के एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक जीता था, फिर एशियन गेम्स से ठीक पहले अपनी शानदार लय में नजर आती हुई और शायद वो एशियन गेम्स और सिंगापुर ओपन जैसे टूर्नामेंट का खिताब जीत चुकी ये जोड़ी वापस एक बार इसी इतिहास को दोहराने की कोशिश में होगी। अब बैडमिंटन के बाद बात स्क्वाश की, जहां नाहद सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इस विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियन ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिल्स को 13-11, 4-11 और 11-8 से हराया। अब अनाहत का अगला मुकाबला शिव सारंगी और गरस के बीच होने वाले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के विजेता से होगा। भारत के अन्य खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो दूसरे दौर में रमित टंडन और पहले ही दौर में वीर चोटरानी का अभियान इस प्रतियोगिता से समाप्त हो चुका है। तो कह सकते हैं कि भारत के अभियान की पूरी उम्मीदें इस युवा खिलाड़ी पे होंगी, जिसकी नजर इस टूर्नामेंट से भी अधिक एशियन गेम्स पे स्वर्ण पदक जीतने पर है। और टेनिस में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने आज तीसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने अपने

0: के दौर के मुकाबले में जैम फारिया को पहले सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए 4-6, 6-0, 6-3 और 6-2 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक्त डी वेवर के साथ नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री डी वेवर को हॉकी विश्व कप 2026 के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
1: पिछले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड ने मिलकर हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया। मैं इस वर्ल्ड कप के भव्य आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपने खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन के लिए भी उनकी सराहना करता हूं।
0: तो खेल एक बड़ी भूमिका निभाते हुए दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में ऐसा ही कुछ उदाहरण हमने देखा, जहां हॉकी ने भारत और न्यूजीलैंड के जो टाइस थे उनको किस तरीके से 100 वर्ष पूरे होने पर मजबूत करने का काम किया था। और ये विश्व कप जिसमें भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल करके ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था, जबकि पुरुष टीम को 8वें स्थान से संतोष करना पड़ा था। और अब बात भारतीय जूनियर पुरुष और महिला हॉकी टीमों की कर ली जाए, जो कल से शुरू हो रहे AHF जूनियर एशिया कप में अपने खिताब को बचाने के इरादे से उतरेंगी। भारतीय महिला टीम ने पिछले 2 संस्करण में जूनियर एशिया कप की ट्रॉफी जीती थी और इस बार मिडफील्डर खेदेम सिलेमी चानू टीम की कप्तानी करेंगी। एलीट पूल में शामिल भारत अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को साउथ कोरिया के खिलाफ करेगा, जबकि भारत 5 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ पूल ए में अपने अभियान की शुरुआत करेगी पुरुष टीम। इसके बाद 6 सितंबर को पुरुष टीम का मुकाबला जापान से, 8 सितंबर को साउथ कोरिया से और 9 सितंबर को चीनी ताइपे से होगा।

0: तो अब भारत में स्टेज सेट हो रहा है एक आर्चरी टूर्नामेंट का, जहां आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा ने अहमदाबाद में होने वाली विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज से पहले आज भारतीय जर्सी का अनावरण किया। 2024 पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह और कांस्य पदक विजेता तीरंदाज शीतल देवी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो भारत इस एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए तैयार है। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि ये खुशी का विषय है कि विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज गुजरात में हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के खिलाड़ी गुजरात आ रहे हैं और इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। श्री मुंडा ने बताया कि उन निर्देशों के खिलाड़ी पहले ही यहां पहुंच चुके हैं।
1: मुझे बेहद खुशी है कि गुजरात में ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, जिसके माध्यम से दुनिया भर के खिलाड़ी गुजरात में आ रहे हैं और वो अपना प्रदर्शन करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है और इस तरह के आयोजन होने से देश के खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अभी 19 कंट्री के लोग यहां पहुंच चुके हैं। देखा जाए तो पहली बार ऐसा मोदी गवर्नमेंट के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में एक विजनरी लीडरशिप के साथ खेल को नया आयाम देने में देश सफल हो रहा है।
0: तो भारत एक बेहतर आयोजन स्थल के रूप में उभरता हुआ, और एशियाई खेलों के लिए एक और अपडेट भारत के पास है, जहां राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी जसवीर सिंह को जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह 77 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम में शामिल किया गया है। तो विशेष इस पर आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि नीरज ने जो काम किया कि आज भारत में उनको देख करके बैक टू बैक कितने जैवलिन स्टार्स जसवीर, सचिन, किशोर जेना तैयार हैं कि अब पूल की कमी नजर नहीं आती।
2: जी बिल्कुल शक्ति, जब यशवीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था तब सभी का पूरा श्रेय, इसका पूरा श्रेय जो है सभी ने नीरज को दिया था कि उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया टारगेट सेट किया था भारतीय जेवलिन थ्रोअर्स के लिए, और ये बहुत ही शानदार एक उनके लिए मौका है यशवीर के लिए, जो अब वो अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने के लिए देखेंगे।
0: जी बिल्कुल, यशवीर से उम्मीद होगी भारत को कि वो नीरज की कमी पूरी करें, और जब नीरज के स्थान पर आप आए हैं तो आपसी उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। विशेष जेवलिन हटा दिया जाए तो 77 मेंबर्स का ये स्क्वाड है, किन खिलाड़ियों से सबसे अधिक उम्मीदें भारत को होंगी?
2: भारत के लिए गुलवीर सिंह और पारुल चौधरी ये एक बहुत बड़े नाम के रूप में साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एशियाई खेलों में 3 स्पर्धाओं में ये भाग लेंगे। गुलवीर 10,000 मीटर, 5,000 मीटर और 1500 मीटर में, जबकि पारुल 3,000 मीटर स्टिपल चेस, 5,000 मीटर और 1500 मीटर में हिस्सा लेती नजर आएंगी।
0: जी बिल्कुल, आपने गुलवीर सिंह का जिक्र किया और हमारी आंखों के सामने वो तस्वीरें आई जब अभी हाल ही में संपन्न हुए

0: मंडल खेलों में उन्होंने दो पदक भारत के लिए जीते, 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में MSME के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
2: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
2: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
3: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
2: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
3: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
2: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी

इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज